मशहूर है कि तुम में से हर एक जो है वो निगरान है, निगहबान है, देखने वाला है, और हर एक जो है वो कुल्लुकुम मसूलुन अन रायते, और तुम में से हर एक जो है मसूल है, मसूल यानी जिसे सवाल किया जाएगा, यानी ज़िम्मेदार, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है अपने मातहत लोगों के लिए। यहाँ पर राइन और राइयत की मिसाल इसलिए दी कि रा जो है आमतौर से चरवाहा कहा जाता है अरब में चरवाहे को, और वो इसलिए दी जाती है चूँकि अरब में ख़ासकर, वरना उस ज़माने में जो है आम तौर से लोगों के पास जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती थी वो जो है वो जानवर हुआ करते थे, चूँकि ज़मीनों वगैरह की तो उस ज़माने में कोई कीमत नहीं थी, लोगों की तादाद, पॉपुलेशन पूरी दुनिया में इतनी कम थी, ज़मीनें बे इंतहा मौजूद थी, तो ज़मीनों की कोई कीमत नहीं होती, जो जहाँ पे चाहे जाके ज़मीन आबाद कर ले वो उसकी ज़मीन हो जाती थी, ये कानून भी था। लिहाजा जो सबसे बड़ी दौलत जो हुआ करती थी वो होती थी इंसान के पास जानवर कितने मौजूद हैं, और उन्हीं जानवरों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती थी। इसलिए बहुत सारी हदीसें, बहुत सारे मतालिब जो है जानवरों के एतबार से बयान किए गए हैं समझ के लिए। अलबत्ता जानवरों के लिहाज से और भी दूसरे अखलाकी किस्से और कहानियाँ और किताबें और दास्तानें और वाक़यात भी हैं जिसमें बहुत सारी इंसानी ज़िंदगी के नमूने मौजूद हैं, और जिसमें इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी जो है मिसालें पेश की गई हैं, और किस्सों के ज़रिए से बहुत सारे मतालिब समझाए गए हैं, ख़ासकर अखलाकी मतालिब, समाजी मतालिब, जो हिंदुस्तान के कल्चर में भी किताबों में रहा है और ईरानी कल्चर में भी बहुत ज़्यादा रहा है। तो खैर अभी उस तरफ हम नहीं जाते हैं, इस हदीस का मतलब समझते हैं कि जिसमें यह कहा गया कि तुम में से हर एक, कोई भी इंसान हो, हर एक उसकी एक ज़िम्मेदारी है, वो मसूल है, वो राई है अपने मातहत लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। अब यह कि उसके साथ जितने लोग उससे जुड़े हुए हों उसी एतबार से उसकी ज़िम्मेदारी होती है। फिर इस हदीस की थोड़ी सी वजाहत भी जो आमतौर से नहीं पढ़ी जाती, वजाहत में यह है कि अल इमामो राइन व मसूल अन राइयते, जो इमाम होगा, जो हाकिम होगा, जो इमाम उम्मत होगा, वो अपनी पूरी राइयत, पूरी उम्मत के फिर वो ज़िम्मेदार और मसूल हो जाता है। वर्रजुल राइन फ़ी अहलही व मसूल अन राइयते, यह एक तरह से हदीस की वजाहत है जो ज़िम्न हदीस में मौजूद है कि एक मर्द अगर है तो वो अपने पूरे घर का जो ज़िम्मेदार है, और अपने मातहत जो घर में लोग हैं उनका वो मसूल है, कि कभी कभी जो है घर में जब मसाइल पैदा होते हैं, इख्तलाफ होता है, दूरियां होती हैं, तो ठीक है, मुमकिन है कि रोल किसी का ज़्यादा हो, कभी किसी खातून का रोल ज़्यादा हो, लेकिन बहरहाल ज़िम्मेदारी ज़्यादा मर्द पर आती है कि वो क्यों कंट्रोल नहीं किया गया, चूँकि क़ुरान ने जो है ये ज़िम्मेदारी मर्दों के हवाले की है, ख़वातीन के हवाले भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन ये ज़िम्मेदारी पूरे घर को संभालने की ज़िम्मेदारी जो है ये मर्द की होती है, जिसमें सब लोग मिल के रोल अदा करें तो ज़्यादा अहम होता है। फिर ख़वातीन के लिए भी फरमाया कुरान ने कि वल मर्अतु राइयतुन फ़ी बैत ज़ौजिहा, एक खातून जो है अपने शौहर के घर में ज़िम्मेदार है, व मसूलतुन अन राइयतिहा, और उनके उसके मातहत जो लोग उसके घर में बच्चे हैं उनकी तरबियत के लिए, उनके रहन सहन के लिए, वो भी जो है मसूल है, मसूल बार यानी जिससे सवाल किया जाए, सवाल किससे किया जाता है, उसी से जो किसी चीज़ का ज़िम्मेदार बनाया जाता है कि भाई ये आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर इसको सही अदा नहीं होगा तो आपसे सवाल किया जाएगा। कौन सवाल करेगा ये मसला अलग है, दुनिया सवाल करेगी, लोग सवाल करेंगे, अल्लाह की बारगाह में सवाल होगा, ये अलग बहस है, अभी उस बहस को नहीं करते। वल खादिमु राइन फ़ी माल सैयदी व मसूल अन राइयते, यहाँ तक की मिसाल दी कि हत्ता खादिम भी जो है खिदमत करने वाला जो घर में मौजूद है या कहीं भी खिदमत करने वाला है वो उसका ज़िम्मेदार है, जिस जो काम दिया गया, एक गेट कीपर का काम है तो वो वहाँ का ज़िम्मेदार है। फिर आखिर में ये कि फ़कुल्लकुम राइन व मसूल, फिर ताकीद हुई कि बस इस लिहाज से देखा जाए तो तुम में से हर एक जो है वो मसूर है और मसूल है और ज़िम्मेदार है अपने मातहत लोगों के लिए। इस लिहाज से अगर देखा जाए रहबर इनकलाब की ज़िंदगी को कि एक ऐसी ज़िम्मेदारी की ज़िंदगी जो नज़र आई है, एक तूलानी मुद्दत, ये नहीं कि दो चार साल के लिए बल्कि एक लंबी मुद्दत में ज़िम्मेदारी की जो ज़िंदगी अपनाई है, कबूल की है, अलबत्ता कभी ये होता कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो रही होती तो इंसान जो है अपने आप को उस ज़िम्मेदारी को लेने में हिचक रहा होता है, इस लिहाज से नहीं कि जो है

पिकनिक पे नहीं जाना है, ये जंग करना है, यहाँ कोई उसके लिए नहीं जा रहे हैं, कोई खेल कूद के लिए नहीं जा रहे हैं। तो कह रहा हाँ हाँ मुझे मालूम है, जा रहा हूँ। तो कह नहीं, फिर भी तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा, इसमें जिम्मेदारी की बात है, माँ होना चाहिए, बाप की इजाज़त होना चाहिए। तो पीछे माँ खड़ी हुई थी, वो आगे बढ़ के आ गई कि हाँ हाँ माँ की इजाज़त है, मैं हूँ, ये मेरा ही बेटा है, मैंने इजाज़त दी है, आप इसका नाम लिखें। तो कहा बाप का नहीं, बाप की भी इजाज़त है, माँ बाप दोनों की इजाज़त है। तो ये हालात थे, अभी ये हालात, पहले हम लोग जब ईरान में थे 20 साल तो ये सुनते थे कैसे हालात थे 8 साल की जंग में, लेकिन अभी लोग देख रहे हैं माशाल्लाह। तो उस ज़माने में भी रहबर इनकलाब के फर्जंद जो अभी रहबर हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह ने महफूज रखा, बमों से और मिज़ाइलों के दरमियान से हिफाजत फरमाई और महफूज रखा, अल्लाह उनको तोले उम्र अता फरमाए। सिर्फ 17 साल की उम्र में जब पहुँचे तो मैदान जंग में, और ये दौर वो था कि जब रहबर इनकलाब प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट के दूसरे दौर में थे, क्योंकि 17 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते 6 साल की जंग हो चुकी थी, 8 साल की पूरी जंग थी, 6 साल की जंग हो चुकी थी। तो अभी 18 साल के इंतज़ार नहीं किया और मैदान जंग में गए, और मैदान जंग में जाने के बाद अहम तरीन ये भी नहीं कि चलो रहबर के बेटे हैं तो चलो ऐसे ही तकल्लुफन आ जाएं देखने के लिए, नहीं, अहम तरीन ऑपरेशन में शरीक हुए, मसलन बैतुलमक़दस 2, बैतुलमक़दस 3, बैतुलमक़दस 4, ये बड़े बड़े ऑपरेशन थे, ऑपरेशन के नाम है मिरसाद और एक और भी ऑपरेशन, 4-5 बड़े ऑपरेशन में जो आखिरी जंगों के सबसे बड़े ऑपरेशन थे उसमें बाकायदा शरीक हुए। और उसी ज़माने में IRGC के जो कमांडर्स थे उनके जो है उस जंग के दरमियान में जो रबते थे, अब जाहिर है कि 17 साल की उम्र में किस तरह से मैदान में थे, कितना फ्रंट लाइन में थे, कैसे ज़ख्मी हुए, वो रवाबी थे जिसकी बुनियाद पर अभी जो है वो दिखाई पड़ रहा है और वो असरात भी दिखाई पड़ रहे हैं। और रहबर इनकलाब की ज़िंदगी में ये चीज़ दिखाई पड़ रही थी, जो इंसान मैदान जंग में हाजिर हुआ, मैदान जंग में जाने का मतलब है कि कभी भी इंसान ज़ख्मी हो सकता है, कभी भी हाथ पैर उसका जा सकता है और कभी भी शहादत हो सकती है, चूँकि बहुत ही आसानी से शहादत होती थी। शहादत भी दूसरे प्रोग्राम में बयान किया गया कि केमिकल बम मार दिए जाते थे जो बहुत सख्त शहादत होती, ये सब कुछ हो सकता था, लेकिन वहाँ पर जो है मौजूद होते थे सिर्फ रहबर इनकलाब नहीं और भी बहुत सारे ज़िम्मेदारान और ज़िम्मेदार लोगों के घर के अफराद, उनके बेटे शहीद चमरान जैसे लोग जो ख़ुद वज़ीर जंग थे और वज़ीर दफा थे, उनकी शहादत जो बिल्कुल फ्रंट लाइन में हुई, हम लोग जाके देख चुके हैं कि बिल्कुल बिल्कुल जो है वो जो फ्रंट लाइन में जहाँ पर संगर बनाया जाता है, मोर्चे बनाए जाते हैं जहाँ पर, वहीं पर उनकी शहादत हुई। तो ये ऐसे अफराद कहाँ से पैदा होते हैं, ऐसे अफराद उस ज़िम्मेदारी के तहत पैदा होते हैं कि जो एक इंसान में अल्लाह ने बुनियादी तौर पे करार दी है, रखी हुई है, कि इंसान की अगर एक असली तारीफ़ पूछी जाए ख़ुद कुरान से, तो कुरान जो है इंसान को सबसे, कुरान जो है इंसान की तारीफ़ करेगा, जो डिफ़ाइन करेगा कुरान, वो ये कि अलमहादिलकुम या बनी आदमा अल्लाह ताबद शैतान, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया है, यानी क्या मैंने तुमसे ये ज़िम्मेदार नहीं बनाया, अहद यानी वही ज़िम्मेदार, ओहदा भी इसी से बना हुआ जो उर्दू में बोला जाता है, ओहदा, ओहदा भी जो है ज़िम्मेदारी, आम तौर से लोग समझते हैं ओहदा यानी मनसब, ओहदा यानी चलो मुबारकबाद देने के लिए, ओहदा यानी लूटने का सामान फराहम कर दिया, ओहदा यानी अब जो है अपने एतबार से अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, लेकिन ये दुनिया के ओहदे हो सकते हैं, इस्लामी तौर पर कुरानी निगाह से देखा जाए तो अहद या ओहदा ये जो है एक ज़िम्मेदारी है, और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यही होती है जब किसी इंसान को कोई ओहदा दिया जाता है। कुरान ने इंसान को पैदा होने से पहले ही से हर इंसान को कहा कि

इस्लामी तौर पर कुरानी निगाह से देखा जाए तो अहद या ओहदा ये जो है एक ज़िम्मेदारी है, और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यही होती है जब किसी इंसान को कोई ओहदा दिया जाता है। कुरान ने इंसान को पैदा होने से पहले ही से हर इंसान को कहा कि मैंने तुझसे कुछ अहद लिया हुआ है, अल्लाह से इंसान का अहद है। ये सूरह यासीन में फरमाया, फिर सूरह अहज़ाब में फरमाया कि मिनल मोमिनीन रिजालुन सदकु मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उस अहद को पूरा कर देते हैं जो अल्लाह से उन्होंने किया हुआ है, अहद को सच्चा साबित कर देते हैं। फिर कुरान की बहुत सारी आयतें इस मतलब पे गवाही देती हैं कि असल इंसान की तारीफ़ की जाए कि इंसान क्या है, तो इंसान की एक सबसे ज़्यादा कुरानी तारीफ़ ये होगी कि इंसान वो है कि जो एक ज़िम्मेदार मौजूद है। दूसरे जानवर भी किसी हद तक ज़िम्मेदार हैं लेकिन उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत कम है। एक दरख्त की ज़िम्मेदारी है कि वो साया दे दे, ऑक्सीजन दे दे, फल दे दे। एक घोड़े की ज़िम्मेदारी है कि वो मैदान जंग में हो या सफ़र में हो तो अपने मुसाफिर को अपनी मंजिल तक पहुँचा दे। गाय भैंस की ज़िम्मेदारी यह है कि वो दूध दे दे, वो बच्चे दे दे, नस्लें आगे बढ़ जाएँ जानवरों की। और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी, लेकिन इंसान की ज़िम्मेदारी इतनी छोटी से नहीं है। इंसान की ज़िम्मेदारी वो है कि जो फरिश्ता नहीं उठा सकता, इंसान की ज़िम्मेदारी वो है कि जिसके लिए कुरान ने कहा कि आसमान नहीं उठा सका, ज़मीन ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। इन्ना अरदना अमानता अलसमावात वल अर्द वल जबाल फ़अबैना यहमिलना व हमलहा अल इंसान फ़अबैना यहमिलना व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहा अल इंसान, कि हमने अमानत को, अमानत यानी ज़िम्मेदारी। अब वो अमानत के मिसदाक बहुत सारे हैं, कौन कौन सी अमानतें हैं उसकी तफसीर से रवायात में बहस की गई है, लेकिन हमने इस ज़िम्मेदारी को देना चाहा, दिया, पेश किया आसमानों के सामने, पहाड़ों के सामने, ज़मीनों के सामने, उन्होंने इनकार कर दिया और डर गए। अब जाहिर है कि ऐसा नहीं होगा अल्लाह ने कोई लाके पेश किया और पहाड़ के लिए नहीं, मैं नहीं लेता। यानी इसका मतलब यह है कि पहाड़ के वजूद में ये सलाहियत नहीं है कि उसके पास कोई ज़िम्मेदारी दी जाए तो कोई बड़ी ज़िम्मेदारी ले ले। पहाड़ की ज़िम्मेदारी इतनी हो सकती है कि ज़मीन ठहरी रहे, लर्जिश पैदा ना हो, कुछ ख़जाने दे दे, कुछ केमिकल्स दे दे, कुछ जो है केमिकल असरात के नतीजे में कुछ कीमती कोयला दे दे या और दूसरे पत्थर दे दे, ये दे सकता है। लेकिन बड़ी ज़िम्मेदारी पहाड़ नहीं ले सकता, ज़मीन बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती। आसमान की जिसकी वसतों की कोई हद नहीं है, इंसान तो नहीं समझ पाया कम से कम कि कितनी वसतें हैं, वो ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता जो इंसान ले सकता है। वह हमला हल इंसान, इंसान ने यह ज़िम्मेदारी ली। अब जाहिर कौन से इंसान ने ज़िम्मेदारी ली, गैर ज़िम्मेदार लोग तो ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते। अगरचे हर इंसान में अल्लाह ने यह सलाहियत रखी है, किसी भी मज़हब में, किसी भी दीन में, किसी भी एरिए में पैदा होने वाला इंसान हो, ये सलाहियत सब में है, लेकिन नहीं ले सकता, हर एक नहीं लेता है। गैर ज़िम्मेदार लोग ज़िम्मेदारियाँ नहीं ले सकते हैं, लेकिन तारीख़ में हमेशा ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ ली हैं, और वो ज़िम्मेदारी लेने वाले तारीख़ में हमेशा बाकी रहते हैं। हम अपने दौर में जिसको याद कर रहे हैं, जिसके फ़िक्र को, जिसके अफकार को गहराई से थोड़ा समझना चाहते हैं, थोड़ी सी गहराई से अपने और आपकी हद तक, वरना मुमकिन है कि बहुत सारी चीज़ें हम जैसे लोग नहीं समझ पाएँ ऐसे अजीम इंसानों की ज़िंदगी में, इमाम खुमैनी और रहबर इनकलाब जैसे इंसान की ज़िंदगी में। लेकिन जो हम समझना चाहते हैं वो ये है कि एक इंसान जिसने ज़िम्मेदारी ली, और ज़िम्मेदारी को चाहे वो इनकलाब के पहले की ज़िम्मेदारियाँ हों, चाहे इमाम खुमैनी के 12 साल जो है ईरान से बाहर निकाल दिया गया, ईरान से बाहर निकालने के बाद जो ज़िम्मेदारियाँ थी, उस इनकलाब के रमक को बाकी रखना, उसकी रूह को ज़िंदा रखना, उसके पैगामात को बाकी रखना, जबकि पाबंदियाँ थीं, शहर बदर किया जा रहा था, मिंबर पर जाने पर पाबंदी थी, दर्स दुरूस पर पाबंदी थी। लेकिन जब एक ज़िम्मेदार इंसान होता है तो उसके ऊपर कितनी भी पाबंदियाँ लगाएं, वो कहीं ना कहीं से अपना किरदार अदा करने के लिए रास्ता तलाश करता है, और अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलता है। फिर इनकलाब आने के बाद ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती चली गईं। आम तौर से ये होता है कि कोई बड़ा इनकलाब आ गया तब लोग खुश होने लगते हैं कि भाई अब तो ओहदे हमारे पास आएंगे। ओहदों को लेकर खुश होने वाले लोग और हैं, ओहदों को लेकर ज़िम्मेदार होने वाले लोग और हैं, और रहबर इनकलाब उनमें से देगी। जहाँ पर फिर जंग पे हुई तो जंग की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी, पूरे जंग की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है रहबर इनकलाब पर होती थी। यानी पूरे जंग का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार डायरेक्ट इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने रहबर इनकलाब को करार दिया हुआ था। तो एक इंसान जो हुकूमत को भी देख रहा है, मुल्क को भी देख रहा है, प्रेसिडेंटशिप को भी देख रहा है, लेकिन जंग के मसाइल को भी देख रहा है। फिर उसके बाद इमाम खुमैनी के बाद उससे भी बड़ी और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी गई कि अब पूरे निज़ाम को देखने की ज़िम्मेदारी है। और निज़ाम की जब बात आती है तो वलायत फ़कीह की बात आती है तो पहले ज़हन में तसव्वुर होता है कि ईरान में वली फ़कीह थे, लेकिन वो इंसान जो ईरान में वली फ़कीह था वो सिर्फ ईरान के लोगों का ज़िम्मेदार नहीं था,
وہ فلسطین کا بھی ذمہ دار تھا، وہ عراق اور سیریا جن سے جنگ ہو چکی تھی ان کا بھی ذمہ دار تھا، وہ عراق جو سب سے بڑا دشمن ملک رہا ہے

8 साल जंग की हुई है, आज वो इराक ईरान से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, यानी बॉर्डर के लिहाज से तो नज़दीक है ही है, लेकिन बहुत सारे मसाइल में, हम पूरे इराक़ की बात नहीं कर रहे हैं, सारे इराक़ के सारे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी इराक़ की बड़ी तादाद में, अगर हम 50 लाख, अगर करोड़ों ना कह सकें तो 50 लाख की तादाद में कह सकते हैं कि जो आकर इस इनकलाब की मीरास को संभाले हुए, वो इंसान जो ईरान में ज़िम्मेदार बनाया जा रहा है, वो लबनान का भी ज़िम्मेदार है, लबनान के मोमिनीन का ज़िम्मेदार है, और दुनिया भर के मजलूमों का ज़िम्मेदार है, दुनिया भर के मजलूमों की आवाज़ का ज़िम्मेदार है, वो इस्लाम का ज़िम्मेदार है, वो शियत का ज़िम्मेदार है, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मीरास का ज़िम्मेदार है। लेकिन उस ज़िम्मेदारी को फिर किस तरह अदा किया, पहले जैसे अर्ज़ किया गया किसी गुफ्तगू में इसमें या किसी और सिलसिले में, कि आमतौर से लोग यही समझ रहे थे कि एक आलिम है, एक अमामा लगाए हुए सर पे, तो क्या क्या करेंगे, लेकिन वो पूरे मुल्क में तालीम के भी ज़िम्मेदार हैं, यानी पूरे मुल्क के एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर से बेहतर करने में, और 37 सालों में इतना बेहतर कर दिया कि आज पूरी दुनिया हैरत में है कि कैसे जो है ये मुमकिन हो सकता है कि एक इंसान इतनी जल्दी इतनी बुलंदी तक ले जाए। चूँकि प्रोपेगेंडा तो बहुत ज़्यादा किया गया था, लेकिन अब पूरी दुनिया देख रही है, लोग तो ये सर समझ रहे हैं चलो मिसाइल बना लिया होगा, कुछ यूरेनियम को इनरिचमेंट कर लिया होगा, लेकिन नहीं, हर मैदान में जाके जब देखते हैं तो इंसान हैरत करता है। तो ये कुछ ऐसे खुद ब खुद नहीं हो गया, या ऐसा भी नहीं हो गया कि मसलन खातमी जैसे लोग या रूहानी जैसे लोग या मसलन आने वाले प्रेसिडेंट ने ये सब कुछ किया है, नहीं, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ रहबर इनकलाब की रही हैं, और रहबर इनकलाब बाकायदा जहाँ डांटना पड़ता था डांटते थे, इन्हीं सदर लोगों को सख्ती से बात करनी होती तो सख्ती से बात करते थे, और जहाँ समझाना होता तो समझाते थे, इसमें कोई भी तकल्लुफ नहीं करते थे, और कहते भी थे कि हम कोई डिप्लोमेट थोड़ी नहीं है भाई, हम तो एक इनकलाबी इंसान है, हम तो एक मुसलमान है, एक शिया हैं, तो बग़ैर किसी तकल्लुफ के जो है, अब जितनी भी आपको तरक्कियां आपको नज़र आ रही हैं ईरान के अंदर, जो अभी पूरी दुनिया हैरत से देख रही है, यानी वाकई हैरत से देख रही है, वहाँ की ख़वातीन, वहाँ के नौजवान, वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ के जो है सेहत, तालीम, शहर की साख्त, वो सारी चीज़ें जो दिख रही हैं, उन सब के पीछे एक ज़िम्मेदार इंसान था जिसने हत्ता साल के नाम रखने में भी रियायत की कि नाम क्या रखा जाए। मतलब कुछ साल नाम रखे गए साल रसूल आदम, यानी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि, पूरे साल भर रसूलुल्लाह के ऊपर लिटरेचर लिखे गए, किताबें लिखी गई, कमी महसूस हो रही थी कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को सही तरह से नहीं समझा गया, तो पूरे साल भर पूरा जो है थिंक टैंक, जितने भी राइटर्स थे, जितने भी स्कॉलर्स थे, वो सब के सब साल भर रसूलुल्लाह के लिए काम करते रहे, एक बड़ा ज़खीरा, एक बड़ा लिटरेचर तैयार हुआ। एक साल को साल का नाम रखा गया साल अमीरुल मोमिनीन, साल इमाम अली अलैहिस्सलाम, तो पूरे साल भर इतनी बड़ी बड़ी तहकीकात हुई, बड़ी बड़ी जिल्दों में किताबें छपी, ताकि अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू, अभी मेरे पास भी मौजूद है शायद 20-22 जिल्द में, इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वो सारे पहलू जो इस पर कभी भी गुफ्तगू नहीं हुई थी, किताबों के कहीं कोने वोने में पड़ी हुई थी कहीं चीज़ें, लेकिन उस पर बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से गुफ्तगू नहीं हुई थी। फिर वही रहबर इनकलाब ने जब महसूस किया कि ज़रूरत है, तो कई साल तक जो है इकोनॉमी, इक्तसाद, मेहनत, कोशिश, जवानों के लिए ये सारे नाम रखते रहे, और ये नहीं फ़कत नाम रख के ऐलान कर दिया, बल्कि उस पर फिर साल भर फॉलो करना, साल भर उसको आगे बढ़ाना, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लोगों के लिए, लोगों के अखलाक के लिए, लोगों की ज़हनी तरबियत के लिए, लोगों के शऊर को बुलंद करने के लिए, बहुत ही अहम मसला है कि मुसलसल रहबर इनकलाब की तकरीरें, चूँकि हम लोग बहरहाल सुनते रहे वहाँ पर रह के, और ये तौफीक रहती थी जो अभी बहरहाल यहाँ आने के बाद इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, कोशिश रहती है फिर भी कि हर मुनासिब मौके पे 2-4-6 दिन बाद, कभी दूसरे दिन, कभी 5वें दिन, कभी 8वें दिन रहबर इनकलाब की एक बड़ी तकरीर होती थी। उसमें किन पहलुओं पर तवज्जो की जाती थी, जिसमें एक बहुत ही अहम पहलू होता था कि लोगों को बेदार करना, लोगों को आगाह करना, लोगों को आलमी मसाइल से आगाह रखना, लोगों को सिर जो है वो रोटी और कपड़े और मकान में उलझा के नहीं रखना, बल्कि बड़े मसाइल कौम के सामने रखना ताकि वक्त पे वो काम आ सकें। और वो अभी दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से रहबर इनकलाब ने अपनी तकरीरों के ज़रिए से लोगों की तरबियत की थी, यानी इंसान हैरत में, तो कैसे हो सकता है कि इतने बमों और इतने असलहों के दरमियान में एक कौम ऐसे खड़ी हो, बच्चे खड़े हों, जवान खड़े हों, औरतें खड़ी हों, एक दो दिन नहीं, पूरे

ढाई महीने तक खड़ी हूँ, तो ये उस एक इंसान की जिम्मेदारी के अदा करने का नतीजा है जो अभी हम देख रहे हैं। इस मौजू पर बहुत ज़्यादा सोचा जा सकता है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन तय ये है कि बहरहाल कुछ पहलू को हम मुख्तसर तौर पर बहस करें ताकि एक बाप खुले इंसान के सोचने के बारे में और एक इंसान के बारे में, एक इंसान की अजीम ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा, थोड़ी सी गहराई के साथ सोचा जाए। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक इंसान की फजीलत बयान की जाए, बल्कि इसलिए है कि इन उसूलों की बुनियाद पर हम सब अपने आप की तरबियत करने की कोशिश करें और अपने शहीद को हम याद रखें। तो इसलिए याद रखें ताकि शहीद के उस मिशन को आगे बढ़ा सकें, और शहीद के मिशन को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि उन जिम्मेदारियों के एहसास ना हो जिसको रहबर इनकलाब अदा करके गए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको बेहतर तौर पर अपनी जिम्मेदारियां समझने की तौफीक इनायत फरमाए। हज़रत इब्राहिम की वो दुआ जो सूरह बकरा में मौजूद है कि अरना मनासिक ना परवरदगारा, हमारे वज़ायफ़ को, हमारी जिम्मेदारियों को, हमारे मनासिक को हमें दिखा दे, हमें क्या करना है, तू खुद बता, तू खुद रहनुमाई फरमा। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको जो है अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाए, इस लायक समझे कि हमको ज़िम्मेदार बनाए, और इस लायक समझे कि शहीदों के और अंबिया के और औलिया इलाही और आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के मिशन में अपने आप को शरीक रखने और उसमें अपना किरदार अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिही।

0: ये चीप पब्लिसिटी नहीं है?
1: ऐसे थोड़ी होता है।
0: आपकी ज्यादातर थंबनेल सेक्स से रिलेटेड?
1: ज्यादातर नहीं।
2: फिर भी क्या जरूरी है?
0: ऐसा कोई थंबनेल ना आ जाए कि जिसके ऊपर मैं सेक्स लिखा हो या मैं इस तरह की चीजें लिखी हो।
2: मुझे पता है बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा डाइजेस्ट करने के लिए।
1: म्यूजिक हलाल है या हराम है?
0: जवान को आप रोक नहीं पाएंगे।
2: म्यूजिक आपके लिए आज जरूरी है। झुक जाओ, झुक जाओ,
3: ये कैसे मुमकिन? एक जमाना था शुरू में खूब सुनते थे।
0: एक और एतराज के जो होता है उनके लिए वी आर करबला के नाम से, यानी क्या एक इंसान के अंदर वो ताकत वो कुदरत है कि वो उस इमाम हुसैन के दर्द को महसूस कर सके?
1: अपने वजूद के अतबार से उसको हम तसव्वुर कर सकते हैं।
2: शरई लाइंस जो हैं वो हमारे लिए क्लियर हैं कि जायज़ है। हमारी जिम्मेदारी शरीयत को बयान करना है।
1: सोशल मीडिया के पीछे एक बड़ी टीम है, 40 लोगों की टीम है।
4: हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम लोग 40 लोग हैं।
2: कि ये जो आपने बनाया इजाबेल मीडिया बहुत अच्छा बना है।
3: शुरू में सबील नहीं पढ़ते थे, सिबील पढ़ते थे उसको।
2: मर्दों की यहाँ
3: तवक्कुल करो, हो जाएगा, पैसे की टेंशन नहीं लो, ये सब बोलते हैं आपको। इसीलिए हम थोड़ा सा बोल्ड भी हो गए इसमें।
2: जब सबील मीडिया स्टार्ट हुआ था तो चैलेंजेस नॉर्मली फाइनेंशियल चैलेंजेस थे।
0: मैंने आपका काम देखा, मुझे आपका काम बहुत पसंद आया।
4: तो उन्हें पता चला कि गुस्ल कैसे किया जाता है।
3: फिक्री एतवार से बहुत एक जैसे हैं, लेकिन हम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं।
2: जब हम लोग डिलीट हुए थे,
1: मुजज़े से कम बात नहीं है।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे सबील मीडिया का बिहाइंड द सीन। हमारे साथ सबील मीडिया के डिफरेंट मैनेजर्स मौजूद हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपके सख्त सवाल, सबील मीडिया की जर्नी को देखेंगे कि कैसे सबील मीडिया शुरू हुआ था, क्या चैलेंजेस आई हैं, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और डेफिनेटली आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप सेटिस्फाइड हैं जवाबों से, और अगर आपके नए सवाल हैं तो वो भी आप डिस्कस करें। लेकिन इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हमारे जो अंदर जो बातें चल रही हैं हम चाहते हैं आपसे भी शेयर करें और हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अलग अलग टीम मैनेजर्स मौजूद हैं सबील मीडिया यूट्यूब चैनल से। मौलाना जॉन आब्दी हैं, मुस्तफ़ा भाई हैं हमारे सबील टून्स चैनल से, जाफ़र साहब हैं, ये मौलाना जाफ़र जैदी साहब हैं, ये जो हैं अब सबील मीडिया में फाइनेंस को भी लीड करते हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हमारे साथ हैं मौलाना वक़ार काज़मी, इनको आपने सुना होगा, हमेशा अहकाम के जवाब देते रहते हैं और बहुत सारे इनके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी इनको भेजे जाते हैं। आज ये कुछ शेयर करेंगे जो इनको पर्सनल लेवल पे पूछे जाते हैं, जो हम शेयर नहीं करते लेकिन आज शेयर करेंगे। और हमारे साथ हैं मौलाना नकी अस्करी साहब, मवद्दत और सबील, मवद्दत और सबील यूट्यूब चैनल को, सबील मवद्दत प्रोडक्शन और सबील मवद्दत चैनल को लीड करते हैं। चैलेंजेस बहुत सादा हैं उनको म्यूज़िक के हवाले से, और बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे हैं, म्यूज़िक है तो क्यों है, जायज़ है तो क्यों है। तो आज वक़ार साहब भी उनको हेल्प करेंगे अहकाम के हवाले से और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे।
1: यहाँ पे जमीर भाई एक बात और है कि खाली 6-7 लोग जो बैठे हुए हैं, 5-6 लोग, वो नहीं है सबील मीडिया में। सबील मीडिया के पीछे एक बड़ी टीम है, 40 लोगों की टीम है उसमें, और जो आप प्रोग्राम्स देख रहे हैं खुसूसन जवानों से मुतालिक, बच्चों से मुतालिक, उनके जो लोग हैं इसके पीछे उनकी एफर्ट है, उनकी कोशिश है और उनका खुलूस भी है। ये जो 4-5 लोग, 6 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं दरीकत, ये उनकी नुमाइंदगी में आपसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ अभी जो लोग बैठे हुए हैं इनकी कुछ नुमायाँ कारकर्दगी है, लेकिन उससे ज़्यादा जो एफर्ट्स और कोशिशें हैं वो हमारी पिछली टीम है। एक ख़ासियत जो सबील मीडिया की है वो ये है कि इसमें अक्सर तुल्लाब और उलमा हैं। आप ये जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देखते हैं, डिज़ाइनिंग देखते हैं, उसके जो है ग्राफिक्स अच्छी होती हैं, इन सब के पीछे जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं रिसर्च टीम से लेके टेक्निकल टीम तक, उसमें अक्सरियत उलमा की है। इसमें हमारे मुस्तफ़ा भाई का बहुत बड़ा किरदार है, हालांकि यह आलिम दीन नहीं मगर आलिम दीन के बेटे हैं, बिलाकर इनका ताल्लुक़ एक इल्मी घराने से और उलमा के घराने से है।
3: तालिब इल्म नहीं है लेकिन पसंद करते हैं,
1: पसंद करते हैं तो लाभ को अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुदा का शुक्र है कि ये जर्नी जो शुरू हुई जिस वक्त हम आए, भाई 2016-17 की बात है, जब हम लोग आए तो वहाँ पे उस वक्त 3 लोग थे, ज़मीर भाई तो थे ही, हमारे टेक्निकल टीम के शुजा भाई थे, हकीर सज्जाद भाई थे यहाँ पर, तो ये लोग थे। फिर
2: सज्जाद भाई नहीं थे, अली अमीर साहब थे।
1: नहीं, अली अमीर साहब तो मुझसे पहले थे।
0: सज्जाद भाई की जगह पे आया था। सज्जाद भाई कहीं उनको जाना था,
2: सज्जाद
0: सफवी
1: जो फिर से
0: तबलीग पे जा रहे
1: हैं। सज्जाद सफवी साहब जो फिर से सबील टून्स और उसके सबील किड्स की जिम्मेदारी देख रहे हैं, उसकी रिसर्च टीम की जिम्मेदारी देख रहे हैं और भी बहुत से काम तहकीकी व अंजाम दे रहे हैं।
0: जी जी यही सज्जाद जी।
1: तो उस वक्त हम लोग जब आए थे तो टेलीग्राम के ऊपर और छोटी छोटी इमेजेस बनती थी,
3: नहीं शॉर्ट नहीं था, छोटा सा
0: मोशन ग्राफिक
1: सबील मीडिया डॉट इन के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था।
2: इंटरेस्टिंग है कि उस जमाने में जब हम लोगों ने बनाया था तो सबील मीडिया का एक और चैनल था, तो हम लोगों ने आई सबील लिखा था, यानी हम लोग का पहला चैनल जो बना था वो आई सबील मीडिया के नाम से। तो लोग जो इसको आई सबील नहीं पढ़ते थे, लोग इजाबेल पढ़ते थे। तो लोग बोलते थे कि ये जो आपने बनाया इजाबेल मीडिया बहुत अच्छा बना है, लेकिन इजाबेल का मतलब क्या है? तो बाद में हम लोग को समझ में आया कि आई हटाना चाहिए, फिर उसके बाद सबील मीडिया बना।
0: जी सही सही
2: जी। ये नाम भी इंटरेस्टिंग है कि नाम भी जो है सबील क्यों रखा गया, ये भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। तो एक तो ये है कि सबील नाम जो है खुद इन्ना हदैना हु सबील, खुद कुरान में शहीद मुतारी कहते हैं कि जो कुरान की टर्मिनोलॉजीज़ है आपकी ज़िम्मेदारी है कि उन टर्मिनोलॉजीज़ को आप ज़िंदा करें। दूसरी चीज़ ये है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पे मैं था, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ रहा था, तो ज़ियारत में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए भी सबील का जुमला जो है वहाँ पर है। फिर मैंने थोड़ी पढ़ा उसके ऊपर तो बाद में देखा कि सबील का मतलब जो है वो अहले बैत से है, कि अल्लाह की तरफ पहुँचने वाली सबील जो है वह अहले बैत और खुसूसन इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ़ है। तो सबील का नाम इंतखाब करने के अंदर भी एक इसके पीछे एक इस्लामिक नज़रिया था उसके बेस के ऊपर, और अहले बैत का ही लुत्फ है कि अल्हम्दुलिल्लाह
1: उसका सबील का लोगो अगर देखें तो उससे भी ये तमाम चीज़ें झलकती हैं। इंशाल्लाह आगे की गुफ्तगु में ये तमाम चीज़ें वाज़े होंगी। शुरुआत में ज़हीर भाई जैसा आपने शुरू किया था, अगर वहाँ से थोड़ा सा जब हम लोग नहीं थे तो शुरुआत
3: के बाद जो सबील के नाम है ना, अभी क्योंकि इन्हें कितना साल हो गया वैसे?
2: 8 साल।
3: 8 साल के बाद अभी थोड़ा बहुत इन्हें ईरानी मेंबर्स भी आ गए, तो वो कभी कभी शुरू में सबील नहीं पढ़ते थे, सिबील पढ़ते थे उसको।
5: तो सिबील
3: सिबील मीडिया, तो बोलो ये क्या नाम रखा आपने सिबील मीडिया
2: मर्दों किया।
3: तो बाद में हम लोगों ने बोला नहीं सबील बहुत सबील, क्योंकि ईरान में सबील उसको भी बोलते हैं जहाँ पे पानी पीने जगह है,
5: नहीं तो वो उर्दू में भी सबील उसी को।
3: हाँ तो मैं बोला नहीं वो सबील है।
2: जब सबील मीडिया स्टार्ट हुआ था तो चैलेंजेस नॉर्मली फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, सैलरीज के सैलरीज को लेके ये वो। तो ये स्टूडियो बनाने के लिए जहाँ पर अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये स्टूडियो जो है हम लोगों ने जो यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उन्होंने अपने हाथ से पूरा स्टूडियो बनाया है। यानी यहाँ पर अगर अभी हमारे दोस्त दिखाएंगे कि मिसाल के तौर पर ये वॉल है, इसके पीछे ग्लास वूल है, उसके पीछे अकोस्टिक टाइल्स है, उसके नीचे लकड़ा है, लकड़े के अंदर होल्स हैं, ये तमाम हम लोगों ने खुद स्टडी किया, खुद बनाया। यानी तमाम जो हमारे साथ एक टेक्निकल बंदे थे वो थे, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि कम पैसे थे तो हम लोगों ने मिसाल के तौर पर ये लाइट्स है, उस ज़माने में हमारे पास लाइट्स लेने के लिए पैसे नहीं थे, तो ये दो लाइट्स अगर आप देखेंगे तो एक लाइट जो है हम लोगों ने लाइट्स खरीद के उसको सॉफ्ट बॉक्स के लिए पैसे नहीं थे, तो हम लोगों ने खुद का अपने हाथों से उसको सिया है। फिर उसके बाद जो है ये
3: दूसरे एक प्राइस जो प्रोफेशनल लाइट है ना एसी, तकरीबन $1,000 ऐसे कुछ था आसपास।
2: जी तो ये ऐसे अभी जो हमारे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह है एक सॉफ्ट बॉक्स वो भी दिखा देंगे, तो वो महंगा होता है तकरीबन 1,000। तो हमारे पास उस ज़माने में पैसे नहीं थे, तो लेकिन पैसे नहीं थे तो हमने क्रिएटिविटी लगाई। मिसाल के तौर पर ये दूसरी एक लाइट अभी भी है हमारे, इसको भी यूज़ करते हैं, ये ईरानी एक बर्तन है, उस बर्तन
1: ये यादगार लाइट है लोगों की।
2: तो ये बर्तन के अंदर हम लोगों ने लाइट लगा के और पीछे से खड्डा करके हमारे शुजा भाई उन्होंने क्रिएटिविटी लगाई, और फिर उसके आगे जो है वापस से एक हम लोगों ने कपड़े से बांध दिया। तो ये ज़मीन पे जो एपॉक्सी करी गई लाइट, ये इसको कलर किया गया, इसको हम लोगों ने खुद अपने तौर से सबने शुरू किया। तो ज़ीरो से खड़े हुए, अपने पैर पे आहिस्ता आहिस्ते खड़े होते रहे। स्टार्ट में जो है अंदाज़ा भी नहीं था कि आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से सबील मीडिया का काम है दुनिया के अंदर। मसलन हम लोग जब हम लोग डिलीट हुए थे 2023
1: अक्टूबर जब वो हमला हुआ था यहाँ पे, समीर भाई आपकी बात काट के एक बात हम कहना चाहेंगे, जब आप बात कर रहे थे फाइनेंस की और उसके बाद हमारे पास पैसे कम थे, यकीनन वो दौर अभी तक अभी सोचने के बाद परवरदिगार का कितना बड़ा

0: करम है उसने, मुजज़े से कम बात नहीं है, कई इसमें तजुर्बे हैं, कई अदद जो हैं वो इसमें वाक़यात हुए हैं। मैं मिसाल तौर पर एक मरतबा सैलरी की बात चल रही थी और अक्सर ऐसा होता था कि महीना ख़त्म हो जाता था, जाहिर सी बात हमारे साथ दूसरे भी लोग हुआ करते थे जिनको हमें सैलरी देनी होती थी, तो वो महीना ख़त्म हो गया है और पैसा नहीं है। तो एक दिन इनसे हम बैठ के बात जमीन से बात कर रहे थे बैठ के, जो सबसे अहम एलिमेंट है वो खुलूस और अल्लाह के ऊपर भरोसे का। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग बहुत पुरखलूस लोग हैं, लेकिन एक चीज़ तजुर्बा की है, अल्लाह के ऊपर भरोसा है, इमाम ज़माना से तवस्सुल। ज़मीर भाई से हमने कहा कि ज़मीर भाई वो जफर भाई आप भी थे शायद उस वक्त अगर याद हो तो, कि ज़मीर भाई यार अभी 2 महीने हो गया, हम लोग 2 महीने में लेट करके सैलरी दे रहे हैं, 5-5, 6-6 दिन एक एक हफ़्ता आगे बढ़ जाता है, या पैसे के लिए कुछ करो। तो ज़मीर भाई ने एक जुमला उसमें कहा था जो अभी तक मेरे लिए तो खैर वो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कहा था कि किसके लिए काम कर रहे हो, किसी ऐसी बहुत ही कैजुअल कहा था, किसके लिए काम कर रहे हो तुम, इमाम ज़माना के लिए काम कर रहे हो, तो उनसे कहो ना वो देंगे तुमको पैसा। वो चीज़ थी कि जिसने एकदम से नहीं वो बहुत हाँ। तो
1: यही बात मैंने सुन के हमेशा सुनता हूँ कि तवक्कुल करो हो जाएगा, पैसे की टेंशन नहीं लो, ये सब बोलते हैं आपको, इसीलिए हम थोड़ा सा बोल्ड भी हो गए इसमें। इसलिए मैं जाके कभी कभी खूब खर्चा करता हूँ अपने हाथ से, लेकिन सोचता नहीं हूँ कि कितना खर्चा चाहिए करना चाहिए।
0: लोगों को आप सोचा कीजिए थोड़ा,
1: लोगों को बुलाता हूँ काम करने के लिए। फिर आजकल जफर
2: भाई आजकल रोक लगा है, मैंने कहा भाई थोड़ा सा आहिस्ता चलो, हर दूसरे दिन एक नई नीरू इनकी आ जाती है।
1: तो मैं बोलता हूँ यार, ज़मीन भाई ने बोला कि छोड़ तो इस चीज़ों को, ये मामले में ज़्यादा पीछे नहीं लगो और काम इन्हें आगे है। हाँ जी,
0: उसके पास अभी मीडिया के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, एक किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि उसके जो आज़ा और उसके जो मेंबर्स हैं उनको उन फिक्री उनकी जो है वो हमांगी होनी ज़रूरी है,
1: बहुत ज़्यादा भी है।
0: और खुदा का शुक्र है कि सबिल मीडिया को जो लोग मिले शुरुआत से ही और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये कि फिक्री एतबार से वो हमाहंग हैं, उनके लिए क्लियर है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। ये भी नहीं कि खाली उनके यहाँ एक ही वो मादी और मेटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचें, नहीं ऐसा नहीं है। इमाम ज़माना, अल्लाह, अल्लाह पे तवक्कुल, जो भी काम करना है। और
3: कुछ एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करता हूँ यानी इसी से रिलेटेड।
1: एक जुमला जो जोन भाई ने बताया था कि फिक्री एतबार से बहुत एक जैसे हैं, लेकिन हम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे नहीं है।
0: नहीं, फिक्री एतबार से मतलब आइडियोलॉजी के एतबार से
3: काम करने के तरीके हम लोग के बहुत डिफरेंट
0: है। हाँ, जैसे मैं बिल्कुल मैं मुझे रिवील करने दो, एक चीज मुझे रिवील करने दो। हमारे यहाँ अभी यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें सबसे मुनज़्ज़म जो है वो मुस्तफ़ा भाई हैं, बहुत प्लानिंग के साथ, हालांकि कभी कभी हम लोगों को उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है।
2: अलबत्ता बेचारे हर दफ़ा कोई ना कोई मशवरा देते हैं लेकिन सुनी नहीं जाती
0: है, सुनी नहीं जाती है।
1: एक ज़माना था शुरू शुरू में खूब सुनते थे,
3: मुस्तफ़ा भाई
1: आजकल सब बिजी हो गए आजकल का। हाँ, तो अब थोड़ा सा टाइट भी होगी ना, 2 साल यानी डिलीट होने के बाद थोड़ा सा हालत यानी जैसे ही नहीं था, ऐसा नहीं कि पहले था, तो इसीलिए सब लोग बिजी हैं अपने काम में ये वो। तो जब नया आइडिया आते हैं बोलते हैं आप खुद करोगे ये काम, तो मैं बोलता हूँ नहीं, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ।
3: मैं कुछ एक्सपीरियंसेस फाइनेंस के हवाले से, क्योंकि व्यूअर्स से, हमारे मोमिनीन से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्लैरिटी हो उसके लिए। तो कुछ चीज़ें, एक तो ये कि ख़ुद अहले बैत का लुत्फ कितना रहा हम लोगों को यानी कामों के अंदर, कि कोरोना शुरू होने से पहले एक हमारे दोस्त हैं गुजरात से हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से 2 कंप्यूटर्स हम लोगों को गिफ्ट किए। हाँ, कहा कि भाई मैंने उनसे कहा कि हमें कंप्यूटर्स कम पड़ रहे हैं, और उसके बाद फ़ौरन कोरोना शुरू हो गया। और कोरोना जब शुरू हुआ तो कोरोना के अंदर वही 2 कंप्यूटर्स की वजह से जो है हम लोग काम कर पाए। और सबील मीडिया का जो ग्रोथ था वो कब था, वो उसी ज़माने में था जब वो कोरोना था। कोरोना में क्योंकि लोग घर पे थे और लोगों को घर पे थे, उनको कोई चीज़ चाहिए थी घर में वक्त सही तरीके से गुजारने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में हम लोगों ने, सबील मीडिया ने कंट्रीब्यूट किया। और उसके अंदर के ये देखें अल्लाह की तदबीर देखें कि वो कंप्यूटर्स आते हैं और उसके 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद जो है तकरीबन कोरोना का पीरियड जो है वो शुरू होता है। और यही 2 कंप्यूटर्स वसीला बनते हैं कि किस तरीके से हम लोग मोमिनीन की हेल्प कर सकें। एक और बहुत ही इमोशनल चीज़ जो हम कोरोना के टाइम पर हुई, तो वो खत था जो हम लोगों को

0: आया था, जाफर भाई बताएंगे उसके बारे में।
1: जी, ज़माने में चूंकि सब लोग घर पे बैठे हुए थे और आम तौर पे काम वगैरह किसी भी को, जॉब्स वगैरह लोगों की नहीं हो रही थी, तो एक बंदे खुदा ने एक हमें 72 रुपये भेजे और ख़त भी उसके साथ एक छोटा सा लेटर भी था। उसमें लिखा था कि मैंने आपका काम देखा, मुझे आपका काम बहुत पसंद आया, अभी मेरी जॉब नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, इस कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। अगर मेरी इसके बाद अगर जॉब हुई तो इंशाल्लाह इसके आगे भी करूँगा। लेकिन वो बहुत ही इमोशनली था उसका वो ख़त, उसका वो लेटर,
0: उसने
1: मैसेज।
0: कहा था कि 72 शहदाए करबला के लिए उनके नाम पे मैं आपको 72 रुपया दे रहा हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग मेरे बच्चों को वो ग़िज़ा दे रहे हैं जो उनके ईमान के लिए ज़रूरी है,
1: सही,
0: इसलिए मैं आपको 72 रुपया दे रहा हूँ और ये 72 रुपये का असर मैं देख रहा हूँ। तो वो इंसान जिसके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, खुद खाने के लिए पैसा नहीं है, वो कह रहा है, लेकिन वो 72 रुपया हमें दे रहा है। सबील मीडिया की अभी जो मंथली सैलरीज हम लोगों की जाती है वो तकरीबन
2: इसके आगे बढ़ने से एक और जो है वो वाकया है। मैं कानपुर गया था, प्रेजेंटेशन दिया सभी मीडिया का एक जगह के ऊपर, इमामिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन एक वहाँ पे, तो उन लोगों ने इन्वाइट किया था। तो वहाँ पे जब सभी मीडिया के बारे में, स्पेशली जब सभी टूंस और सभी किड्स के बारे में मोमिन को बताया हमने, तो सब प्रेजेंटेशन वगैरह ख़त्म हो गया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा कि बहुत। उसके मैं आके उनके ऑफिस में बैठा तो एक खातून आई, उन्होंने कहा वहाँ सब एक बात करनी है, आप सबने कहा बताइए। तो उन्होंने मतलब वो थोड़ा सा नीचे से कहते हैं कि शर्मिंदा हो रही थी, उन्होंने 10 रुपये निकाल के दिए हमको। मतलब वो हमको तो पता है कि मतलब आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप आइंदा में हमारे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और इससे हमारे बच्चों की तरबियत हो रही है, हाँ सब हम बेवाएँ। यानी ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही मतलब इमोशनल करने वाली थी और बहुत ही मेरे लिए एक सबक था वो, कि ये 10 रुपये वहाँ सब इसको रख लीजिए, मैं बेवा हूँ, मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है, जब बड़ा होगा तो इंशाल्लाह जब जॉब में आएगा तो मैं और सभी मीडिया की इसमें मदद करूँगी, मगर मेरी तरफ़ से ये 10 रुपये आप सभी मीडिया में पहुँचा दिए। 10 रुपये अभी भी रखे हुए हैं यहाँ पर, मैं इन लोगों को बताया था कि वो 10 रुपये अभी रखे। ये तरीक़त पैसे की कमी नहीं, उसकी जो नीयत है, उसकी जो जो खुलूस है, वो बरकत देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि इन कोरोना के बाद से आपने भी, आप लोगों ने भी इस बात को महसूस किया होगा कि जिस तरीके से सबील मीडिया ने ग्रो किया है, जिस तरीके से सबील मीडिया आगे बढ़ा है, मुख्तलिफ उसके प्रोजेक्ट्स आए हैं। अभी यूसुफ मरियम इतना महंगा प्रोजेक्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आई। मोमिनीन खलूस के साथ मदद करते रहे, अल्लाह की तरफ से जो है वो इनायत होती रही, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि जो सैलरी के बारे में बताने जा रहे हैं अमीर भाई
0: जी,
3: जी ये सारा बात करके
0: बताएं मंथली सैलरी की,
3: सारा बात करके जफर भी बहुत इमोशनल हो गए थे।
2: नहीं
3: थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे शायद,
0: जो देंगे
2: हाँ नहीं हो है भी ये चीज़ें जो है
0: वो लोगों का खुलूस है। तो जाफर भाई सैलरीज के बारे में बताएं कि कितनी महीने में सैलरीज जाती हैं अभी फिलहाल।
1: जी सैलरी के बारे में मैं नकी में बताएं ज़्यादा बेहतर है, चूँकि नकी
4: सैलरी तकरीबन अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो नहीं नहीं अभी वो सलाम हो चुका है
2: सबकी तरफ से, तमाम क्या कहते हैं मेम्बरान की तरफ से मैं सलाम कर रहा हूँ, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नकी भाई के बारे में बहुत, चूंकि बहुत देर के बाद इनको मौका मिला है बोलने का, हम लोग तो ज्यादा बोलते हैं, आदत है हम लोग की,
0: उसके अंदर भी आप बोलने नहीं दे रहे
2: जी, उसमें बोलने नहीं दे रहा हूँ, लेकिन
1: वो करने दीजिए भाई।
2: नहीं नहीं मैं पहले बता दूँ नकी भाई,
1: सलाम कर दिए, मैं सलाम कर दूँ,
2: प्लीज प्लीज प्लीज जी अहमियत। नकी भाई हमारे जो सबील मदद और सबील प्रोडक्शन टीम है उसके हेड हैं और उसको हेड करते हैं, और साथ साथ फाइनेंस जो है वो जाफर भाई के अंडर में अब देख रहे हैं, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का भी इन्हीं हिसाब किताब इन्हीं के हवाले है। बिस्मिल्लाह नकी भाई,
4: अभी सैलरी जो हम लोग तकरीबन दे रहे हैं वो यानी इंडिया, हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम लोग 40 लोग हैं, लेकिन हमारे साथ जो है बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग
0: जो
4: आउटसोर्स हैं, हाँ, और हमारे जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें भी लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अभी हमारी जो सैलरी जा रही है तकरीबन 6 से 7 लाख रुपये पूरा, यानी टोटल हम लोग जो है पे कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी तक हमें कमी महसूस नहीं हुई कि हमें किसी महीने में सोचना पड़ा हो कि हम सैलरी कैसे देंगे। अलबत्ता ये शायद पहले, बहुत पहले जो है ऐसा हुआ कि आप लोग ने सोचा, लेकिन अभी जब से मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन हाँ, ये इमाम ज़माना का जो है वो एक करम है, इमाम ज़माना ने का एक वो ख़ास उनका लुत्फ़ है कि वो किसी न किसी तरह से जो है वो पूरा कर ही देते हैं, अगरचे जो है महीना ख़त्म होते होते ऐसा सोचना पड़ता।

0: था कि अभी
1: प्रेशर रहता
0: कैसे,
1: है लेकिन
0: हाँ
1: लंबी
0: प्रेशर
1: उम्र
0: होता है,
1: हो।
0: लेकिन जब टाइम आता है तो वो फिर
1: हाँ
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: वैसे ये
0: पूरा हो
1: प्रेशर
0: जाता
1: होता है नहीं होता है तो जाफर भाई बताएंगे।
0: है।
1: नहीं प्रेशर डेफिनेटली रहता है क्योंकि फाइनेंस के हवाले से सोचना
0: सोचना
1: पड़ता है।
0: पड़ता है। हमने एक दफ़ा हम मैं जॉन भाई और वकार हम लोग मिलकर शुरू भी किया था कि वो डोनर्स की जिन्होंने किसी भी हवाले से सबील को डोनेशन दी थी, तो उनसे वन बाय वन करके वन टू वन फ़ोन करना, उनसे रابطہ करना, उनके एडवाइस को लेना, फिर जो है उनसे तकाजा करना कि जिस तरह से आप इससे पहले कंट्रीब्यूट करते रहे, आगे करते रहे। तो डेफिनेटली एक प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन इसमें भी ये भी सच है कि चूंकि काम इमाम ज़माना का है तो मदद भी वही करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहते चलें कि ये सारा जितना भी खर्च अभी नकी भाई ने बताया और जितने प्रोजेक्ट के बारे में जब हम आइंदा बताएंगे, ये सब के सब ये हम किसी भी मराजे के दफ्तर से वाबस्ता नहीं है, किसी भी इदारे से वाबस्ता नहीं है, ये टोटली जो है आप मोमिनीन के ताउन से ही होता है।
1: यानी क्लियरली कहना चाहते हैं कि हम किसी भी इरेनियन ऑर्गेनाइजेशन से पैसा नहीं लेते। हम लोग जो हैं सिर्फ हिंदुस्तान में जो मोमिनीन हैं उनके सपोर्ट से और आप लोगों के सपोर्ट से। जो इंटरेस्टिंग है, अभी पिछले 2 महीना पहले मैं इंडिया गया था तो जो अकाउंट्स की टीम है वहाँ पर उनके साथ मैं बैठा तो मैंने अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स कुछ देखे तो उन्होंने मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि अक्सर डोनेशन जो हमारे होते हैं वो 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। यानी हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ होते हैं डोनर्स जो ज़्यादा पैसा देते हैं, बड़े डोनर्स होते हैं खुम्स का पैसा देते हैं कि हमारे पास डोनर, लेकिन 100 रुपये और 200 रुपया देने वाले हमारे डोनर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को अगर लग रहा है कि भाई हमारे हम लोग 100 रुपया देंगे उससे क्या होगा, नहीं, आपके 100 रुपये से ही सबील मीडिया जो
0: जी
1: वो चल रहा
0: सुन,
1: है।
0: मैं वकार के साथ जब माह रमजान का शो करते तो हम लोग तो वकार अक्सर कहते थे आप डोनेशन दे 5 रुपए 10 रुपए दे, तुम्हारी बात सीरियस ले लीजिए,
1: लोगों ने
0: तुम्हारी बात
1: सीरियस ले
0: सीरियस ले लीजिए। ये ज़्यादा बात है कि भाई अच्छा ये कोई कोई बुरी बात नहीं है कि लोग ये कोई कह सकता है
1: लेकिन
0: कि
1: ये चीज़ जाफर भाई, माजरत
0: लोग ऐसे
1: जाफर भाई, देखिए असल 5 रुपए और 10 रुपए और 20 रुपए नहीं है। 20 रुपए में वो बरकत है कि
0: बिल्कुल
1: जिसकी वजह से
0: डेफिनेटली
1: अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोग्राम ऐसे हैं कि जो हम लोगों के आगे भी बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह इसी 10 20 50 को हम बढ़ा रहे
0: हाँ बढ़ा रहे
1: 100 1000 2000 जितना मुमकिन हो।
0: इंशाल्लाह
1: उसके
0: बिल्कुल
1: अलावा भी अभी आप
0: बिल्कुल
1: मेरे यहाँ आने से पहले एक फ़ोन आया, अभी एक ज्यारत के लिए मोमिन आए हुए हैं। ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ 10 ही रुपए आते हैं, 10 रुपए से ज़्यादा भी मोमिनीन जो है वो फ़ोन करके कहते हैं कि भाई आके ले जाइएगा।
0: नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ फाइनेंस के हवाले से लोगों के लिए क्लियर हो गई कि हम लोग यानी कैसे हम लोगों का टोटल सेटअप आप लोगों से ही आप लोगों पे डिपेंडेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंसी है जो हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगता है ये है कि जैसे नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि एक या दो बंदे होते हैं उनको सिर्फ पता होता है कि भाई पैसा कहाँ आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सबील में जो चीज़ सेटअप की वो ट्रांसपेरेंसी है। बहुत बार मसलन मुझे पता भी नहीं होता है कि कितना पैसा है, कहाँ से आया, कहाँ गया, वो पूरी एक टीम है, वो टीम पूरा मैनेज कर रही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी अगर आप, मैं खुसूसन यूथ को कहना चाहता हूँ कि अगर आप आइंदा में ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना चाहते हैं तो उसमें ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी ये दो चीज़
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: इंपॉर्टेंट है
1: बहुत
0: कि आपके
1: ज़रूरी
0: जो
1: है।
0: स्टाफ हैं, आपके जो हमकार हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, उनको ट्रस्ट होना चाहिए कि एक्चुअली आप इमाम के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप लेयर्स लगाते हो कि नहीं ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो उसके पास रहेगी, ये इसको नहीं पता रहे, तो उससे रिजल्ट ये होता है कि लोगों को शक लोगों के जहनों में इजाद होता है। आप ट्रांसपेरेंट रहें अपनी खास टीम के साथ ताकि इन्फॉर्मेशन सबके लिए क्लियर रहे। एक और चीज़ जो मुझे स्टार्ट में, फिर हम लोग आज की दुनिया में आएंगे कि आज के चैलेंजेस जो सवालात हैं वह जाफर
1: जी
0: भाई आप शुरू करिएगा या कि जो सवाल सबील के हवाले से
1: हाँ,
0: किए
1: जो
0: जाते हैं।
1: एतराजात किए
0: हाँ
1: जाते हैं
0: एक और चीज़ जो वो आलम वो जो यहाँ पे काम करते था क्या नाम
1: कासिमी,
0: कासिमी, कासिमी वो जो नहीं कासिमी
1: आगे मोहक्किक
0: कासिमी का जो कासिमी की वो आ गई है तो उनके लिए जो है आप मोमिनीन से दुआ उनके लिए दुआ
1: हाँ
0: कीजिएगा, मरहूम हो गए। ये पूरे स्टूडियो के सेटअप में उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत जहमत की थी, तो इंशाल्लाह आप मोमिनीन से दुआ है कि उनके लिए सूरह फातिहा भी पढ़ दीजिए और उनके लिए दुआ भी कीजिएगा, उनके हक़ में दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। हाँ मुहक्किक, अगर मुहक्किक का वाक़या एक बोल देते हैं ताकि लोगों के लिए, हम लोगों ने जो सबील मीडिया शुरू हुआ था सबसे पहला प्रोग्राम हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए किया था, उसके लिए कलाम कौसर के नाम से एक प्रोग्राम किया था और उसी हज़रत बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बरकत से ही सबील मीडिया की शुरुआत हुई थी। उस टाइम पे एक अगर मुहक्किक यहाँ काम करते थे तो उन्होंने ख्वाब देखा था और वो ख्वाब जो है
1: हंसते लगे ख्वाब सुन के।
0: तो
1: शायद देखें ये हम लोगों के लिए क्लियर है कि

0: अहले बैत का लुत्फ़ है, और अहले बैत अलग अलग तरीके से, खुसूस हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लेके, वो उसने एक ख्वाब देखा और आके, जब हम लोग चार लोग पांच लोग ही काम करते थे मैक्सिमम, मेरे ख्याल से पांच लोग,
1: पांच ही लोग थे,
0: पांच थे हाँ, तो उस ज़माने में उसने ख्वाब देखा, ख्वाब देख के आया, और ख्वाब देख के आने के बाद वो कहता है कि मैंने एक ख्वाब देखा हूँ जिसके अंदर सबील मीडिया एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मुझे कहा है कि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी और इसमें बहुत काम होगा, मसलन उनके लिए, उनके दीन के लिए, उनके मकसद के लिए। तो उसने आके बहुत इमोशनली आके मुझसे कहा, यानी हम लोगों से कहा, तो हम लोगों के लिए खुद एक ये, उस ज़माने में हम लोग ने तसव्वुर नहीं किया था कि सबील मीडिया में इतने लोग काम करेंगे, ये अलग अलग बख्श होंगे, ऐसा होगा, इतने डिपार्टमेंट्स होंगे। अल्लाह का शुक्र है, बीबी ज़हरा की का करम है कि अलहम्दुलिल्लाह आहिस्ते आहिस्ते हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। दोबारा खाली वो
1: बशारत दे के फिर चले गए।
0: हाँ, तो आगे मुहक्किक जो है उन्होंने बताया, लेकिन फिर वो खुद ही नहीं रहे, वो खुद यानी हैं जिंदा है लेकिन हमारे साथ नहीं रहे, यानी वो खुद जो है वो उनको शायद बेटर जॉब मिला तो वो चले गए। तो डिपेंड करता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मसलन आप एंड तक रहें, उनको जो उनके लिए मुनासिब है। लेकिन ये कुल्लन एक जर्नी के अंदर बार बार हम लोगों को एक चीज़ समझ में आई कि जब भी मुश्किलें हुई, अहले बैत का वसीला था, खुदा पे भरोसा था और मोमिनीन का साथ था, जिसकी वजह से हम लोगों ने तमाम मुश्किलों को हल कर पाए। तो हाँ, यहाँ से अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि हम लोग जो हैं जो चैलेंजेस जो हैं सबील मीडिया को सवालात किए जाते हैं कि आप ऐसे क्यों, आप वैसे क्यों हैं, उसको हम लोग डिस्कस
2: जी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक अब मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाता हूँ और लोगों की तरफ से जो सवालात किए जाते हैं उनको नुमाइंदगी करते हुए, एक सब बड़ा एतराज़ जो सबील मीडिया पर किया जाता है, ख़ासकर सबील मीडिया कि थंबनेल के ऊपर किया जाता है, वो ये कि आप लोग जो है मतलब आपकी ज़्यादातर थंबनेल सेक्स से रिलेटेड ऐसे हो। तो बाज़ लोगों ने तो कहा कि हम फैमिली के सामने आप सभी मीडिया का पेज खोलते हुए डरते हैं कोई कोई ऐसा वीडियो, ऐसा कोई थंबनेल ना आ जाए कि जिसके ऊपर मतलब सेक्स लिखा हो या मतलब इस तरह की चीज़ें लिखी हूँ, तो ऐसा क्यों, ये चीप पब्लिसिटी नहीं है?
3: देखिए, चूँकि ये चूँकि अहकाम से मुतालिक है लिहाजा मैं पहले इसको जो है वो बयान कर दूँ आपके लिए कि सबसे पहली बात तो ये कि ज़्यादातर नहीं है। आप जाके देखिए वीडियो, तकरीबन 400-450 वीडियो के दरमियान जो है अभी है, 450 से ज़्यादा वीडियोस हैं उस अहकाम की। आप जाके उसमें देखें कि कितनी वीडियोस हैं ऐसी, खुद देखें। हाँ, ये कहा जा सकता है कि 400 में से 10 से 15 वीडियोस ऐसी होंगी कि जिसके ऊपर इस तरीके के थंबनेल हैं, तो ज़्यादा नहीं है पहली बात। वजह क्या है ये दूसरा मरहला होगा कि क्यों, ये कोई ऐसा नहीं है। आप उधर से जाके भी तो देखें कि हमारी वीडियो नमाज के सिलसिले से कितनी ज़्यादा है, नमाज के मसाइल कितने हैं, खुम्स के मसाइल कितने हैं, दीगर जो जवानों के जो जितने भी सवालात आते हैं उसके सिलसिले से कितने जो है वो हमारे पास हैं।
1: अच्छी बात है जी, लेकिन ये 10-15 भी क्यों है?
3: 10-15 उसकी वजह सबसे मेन ये है कि जब जवान हमारा, और ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग खुद से जो है डायरेक्ट बनाते हैं, जवान हमसे 20-30-40 लोगों ने सवाल किया किसी एक चीज़ के बारे में, तब हम उसके बाद से उसके बारे में तय करते हैं हाँ कि भाई इसके बारे में ज़्यादातर सवालात आ रहे हैं तो ये एक इशू है, इसको हमको बयान करने की ज़रूरत है। अच्छा, हमने बयान कर दिया क्या कि उसको एक बस्ते में बंद कर दिया, मतलब हमने लिखा थंबनेल पे खुम्स, अंदर हमने बताया किस चीज़ के बारे में, मसलन मास्टर बिशन हराम है, खुम्स का देख के कोई बंदा जिसने सवाल किया मास्टर बिशन का वो नहीं जाएगा ना। बिल्कुल, तो एक वजह ये है कि हमको उन जवानों के सवालात के मुताबिक जो है वो हम लोग थंबनेल बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है
4: इतराज़ है कि चीप पब्लिसिटी। जी नहीं, चीप पब्लिसिटी नहीं है ये, अगर करेंगे इसको आप मोहतरम अल्फाज में और बहुत ही बंद अल्फाज में बनाएं तो फिर फ़ायदा क्या होगा? मिसाल एक तालिबे इल्म, एक स्टूडेंट की, एक जवान की प्रॉब्लम है कि मास्टरबेशन उसकी प्रॉब्लम है, तो उस अगर हम वो फिकही इस्तेलाह इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमना मिसाल के तौर पर, किसको समझ में आएगा वो?
1: किसी की समझ में नहीं आएगी
4: मिसाल के तौर पे, और जो फिक में बयान होती है तौजीर मसाइल में जो लिखी रहती हैं, जवान हमारा उर्दू जानता नहीं है, ठीक है, उसको वो इस्तेलाहें पता नहीं है। और दूसरी बात, ये कोई बुरी बात नहीं है, आप उठा के यूट्यूब पर देखें, इशू है एक, आप यूट्यूब पे उठा के देखें हज़ारों की तादाद में इस तरह के थंबनेल हैं जिनको ये चीज़ें जाननी होती हैं, वो इसको बयान करते हैं ताकि लोगों को पता लगे। अब ये एतराज़ कि चीप पब्लिसिटी है तो बुरी बात है, ये बुरी बात नहीं है, ये जब तक आप खुल के बयान नहीं करेंगे ये एतराज़ फिर आप उठा के मराजे तकलीद के ऊपर करें कि उन्होंने अपने तर्ज़ुल मसाइल में खुल के इस तरह की बातें की हैं। ये एतराज़ जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस के ऊपर जाएगा, क्यों उन्होंने खुल के हर मसले का हल बताया है, ऐसे थोड़ी होता है।

0: इस चीज़ के ऊपर मैं बयान कर दूं, एक साहब मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से, वो गुस्ल के बारे में नहीं जानते थे। जब उन्होंने अहकाम की वीडियो देखी यहाँ की, तो उन्हें पता चला कि गुस्ल कैसे किया जाता है। तो
1: बताइए,
0: अब ये चीज़ अगर उस थंबनेल पे या उस टाइटल में अगर हम ना
1: पता भी नहीं चल
0: लिखते,
1: रहा है कि
0: तो
1: वीडियो
0: उन्हें
1: से
0: पता ही
1: क्या
0: नहीं
1: मतलब
0: चलता कि ये वीडियो किस सिलसिले से है।
2: एग्जैक्टली जाफर भाई, ये बात कर रहे थे, आप फ़ोन कर रहे थे हम लोग, हम वकार और आप मिलके फ़ोन करते थे फीडबैक के लिए, अपने जो है जो हमारी सब्सक्राइबर्स हैं या जो हमारे डोनर्स वगैरह हैं उनको, तो उनमें से कई लोगों ने ये कहा कि मौलाना साहब एक जो खासियत है समीर मीडिया की वो ये कि वो ऐसे इश्यूज़ को बयान करता है कि ऐसे जवाब देता है कि जिनको जिनके सवालात हम जाके अपने मोहल्ले के मौलाना साहब, अपने मस्जिद के पेश इमाम जो आलिम दीन रेजिडेंट वहाँ पे जो मौजूद हैं उनसे नहीं पूछ सकते हैं, शर्म आती है हमको। एक खातून जो है वो जाके वो सवालात नहीं कर सकती है एक शर्म की वजह से, और यहाँ पे वो सबील मीडिया या सबील अहकाम के ऊपर ये जो जवाब दिए जा रहे हैं वो बहुत ही आराम से अपने मसले का हल पा रही है। तो ये चीप पब्लिसिटी है या अहम मसाइल हल करना है भाई? हम इसलिए कर रहे
1: भैया
2: हैं
1: कि
2: क्योंकि
1: आप कह रहे हैं कि हम एक तरह से एक मुश्किल को हल कर रहे हैं जवानों की,
2: बिल्कुल
1: और एक वो बैरियर जो था उसको ख़त्म कर रहे हैं।
3: जी। एक और चीज़, ये टैबू जो बना दिए गए ना कि मसलन मौलाना ये नहीं कर सकते, मौलाना वो नहीं कर सकते, तो हमें इसको तोड़ने की ज़रूरत है कि तालिबे इल्म की हमारे एज़ आलिमे दीन हमारी ज़िम्मेदारी है कि जवान की अगर मुश्किल है तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि उस मुश्किल को मैं हल करूँ, ये मेरी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपकी क्लिक ज़्यादा हो, आपकी व्यू ज़्यादा हो, तो क्या मुश्किल है? यानी कि अगर हमारी क्लिक ज़्यादा हो, एक तो मुश्किल है, हम कोई ऐसा इशू तो नहीं उठा रहे हैं जो इशू जवान का नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्लिक के लिए लोगों को आपस में लड़ाने के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं। 100 ऐसे मौजू हम जानते हैं कि उसको अगर हम छेड़ेंगे तो हमारी व्यूज़ भी ज़्यादा होगी, लेकिन हम उससे समाज में फसाद होगा, हम वो इश्यूज़ नहीं उठा रहे। तो अगर कोई अगर ये कहता है कि आप लोग व्यूज़ ज़्यादा चाहते हैं, तो हाँ चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? अगर व्यूज़ नहीं होगी तो पैगाम पहुँचेगा कैसे? यानी व्यूज़
1: सही
3: के ज़रिए से ही पैगाम पहुँचेगा ना। अब अगर ना एक वीडियो बनाएंगे उसके अंदर 100 लोग देखेंगे, एक वीडियो बनाएंगे 1 लाख लोग देखेंगे, नेचुरल सी बात है कि हम चाहते हैं 1 लाख लोग देखें, क्योंकि बना ही इसलिए रहे, तबलीग का मतलब ही पहुँचाना है, तो हम
1: बिल्कुल।
3: लोग पहुँचाना चाहते हैं।
4: जैसे
3: तो
4: थोड़ा पुशबैक नहीं करेंगे आप?
1: क्या बताइए, आप मेरे मुआविन बनिए, मददगार
4: नहीं, मुझे
1: बनिए,
4: तो आपने बोला था मैं अभी
3: पब्लिक
4: पता, आप
3: प्रोसिक्यूटर
1: तो मुझे बताइए, कुछ रहनुमाई
3: वीक,
1: कीजिए।
3: पब्लिक प्रोसिक्यूटर वीक है।
4: अभी कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार मेरा जो पब्लिक हमारा नुमाइंदा था वो कुछ भी नहीं बोल रहे।
1: मैं अपने मुझे लग रहा है कि मेरे पास अब कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर आप हैं आप बताइए, आप अगर कुछ।
4: मैं इस मामले में
1: मैं सेटिस्फाई हो गया चूंकि मैं जवाब से।
3: जनरली लोगों को ये अक्सर जवान समझते हैं कि भाई हमारी मुश्किल है, मुश्किल हल हो रही है। कुछ लोगों के अंदर यह है कि भाई इन लोग क्लिक के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। जो हम लोगों के यहाँ चैलेंज है वो ये है कि हम लोगों की मुश्किलों को हल करना चाहते हैं, टैबूज़ को तोड़ना चाहते हैं जो समाज में टैबूज़ बने हुए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो शरीयत ने हमको बताया वो हमारे लिए रेड लाइन है, हम लोग उसको फॉलो करेंगे, शरीयत की रेड लाइंस को क्रॉस नहीं करेंगे और मुश्किल मोमिनीन की हल करेंगे। ये हम लोगों का एक ओवरऑल अप्रोच है जिसके अंदर आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं अगर आप इख्तलाफ करना चाहें तो।
1: हाँ अलबत्त, मैं कुछ मौरिद में तो करता हूँ आपसे इख्तलाफात
3: जी।
2: अलबत्त ये चीज़ खाली मोमिनीन ने नहीं कही है, कुछ उलमा ने भी कही है ये बात। मैंने उनसे पूछा, मुझसे जब डायरेक्ट उनसे पूछा, आप इसका बताइए कि राय हल क्या है, क्या अल्टरनेटिव है आपके पास? मिसाल के तौर पर अगर मास्टरब्यूशन की जगह आप कहते हैं इस्तेमना, कौन जानेगा? या मसलन आप लफ्ज़ जमा इस्तेमाल करते हैं, हमने बहुत आसान करके थंबनेल पे लिखा है साथ पर हम बिस्तरी, कुछ हद तक लोग समझ सकते हैं इसको, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग जो है नहीं समझेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बजाय अगर उसका जो इंग्लिश मतबादिल है अगर वो हम इस्तेमाल करते हैं तो लोग समझते हैं उसको, समझते हैं कि
3: एक और चीज़ ये है कि बच्चे के सामने नहीं देख सकते हैं, बच्चों के सामने सभी भाई यूट्यूब के लिए, बच्चों के लिए यूट्यूब किड्स हैं, YouTube बड़ों के लिए। आप बच्चों को क्यों YouTube दिखा रहे हैं? आप YouTube किड्स दिखाएं या बच्चों के प्रोग्राम्स दिखाएं? जो अहकाम का चैनल है वो बच्चों के लिए थोड़ी ना है। हर एक चैनल अपनी एक टारगेट ऑडियंस को डील करता है। तो मुझे लगता है कि ये आंसर मेरे ख्याल से मोमिनीन के लिए वाजे हो गया होगा, लेकिन अगर अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर अपने पॉइंट्स को रखें, हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, हम लोग जो हैं उसको डिस्कस करेंगे।
1: अच्छा, यहाँ से एक बात ये निकली कि मिसाल के तौर पे अहकाम का एक चैनल है, तो फिर मैं थोड़ा सा पलटता हूँ उसकी तरफ कि मिसाल जब हमारे चैनल्स ये
3: डिलीट
1: हुए सारे, और उस टाइम हमारे 5 ही चैनल्स थे और फिर हमने कोशिश की दो चार महीने के बाद कि उस चैनल को रिट्रीव करें, नहीं हो सके। और उसके बाद जब हमने नए चैनल्स लॉन्च किए तो मेरे ख्याल से मुझे हमें बताना चाहिए कि

0: अब हमारे कितने चैनल्स हैं, चूँकि शायद वो मोमिनीन तक पहुँच नहीं रहे हैं।
1: हाँ, अक्सर मोमिनीन का कहना भी है सोशल मीडिया दोबारा नहीं आया अभी तो वो।
2: तो ये है कि आपकी मोमिनीन की जिम्मेदारी है कि खुद सबील मीडिया को सर्च करें। सबील मीडिया के अलग अलग चैनल्स हैं, सबील अहकाम अलग चैनल है। अभी अहकाम के वीडियोस जो हैं सबील अहकाम पे आते,
0: पहले सबील मीडिया पे ही जाते थे वो,
2: तो अब वो सबील अहकाम पे जाते हैं।
1: पॉडकास्ट भी ऐसे,
2: वैसे पहले पॉडकास्ट सबील मीडिया पे आता था, अब सबील पॉडकास्ट का अलग चैनल है जहाँ पर आप ये देख रहे हैं। इसी तरीके से सबील मवद्दत जो है, पहले सबील मवद्दत के नाम से था, अभी सबील मवद्दत भी है और मवद्दत प्रोडक्शन भी है। तो दो अलग चैनल से, एक में नौहे मनकबत होते हैं और एक में जो है नशीद टाइप चीज़ें होती हैं। सबील टून्स हैं, सबील किड्स हैं जहाँ पर बच्चों के प्रोग्राम्स आते हैं। सबील टून्स में राइम्स आते हैं बच्चों के, एनिमेशन कार्टून्स वगैरह आते हैं सबील टून्स में। सबील मीडिया में यूथ रिलेटेड सोशियो पॉलिटिकल और जनरल जवानों के इश्यूज़ को रहबरे मौज़म आयतुल्ला खामिनाई, आयतुल्ला सिस्तानी की व्यूज़ को प्रेजेंट किया जाता है। ये अलग अलग चैनल,
1: यूसुफ और मरियम, यूसुफ और मरियम
2: कुरान का एक चैनल है जो जिसके कोई नुमाइंदे यहाँ पर नहीं है, होना चाहिए था
0: छुट्टी पे।
2: तो हाँ, सबील कुरान का एक चैनल है, सबील कुरान के साथ तफसीर का एक अलग से चैनल है जिसके लिए हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग एक अलग से एक प्रोग्राम करें।
3: एप्लीकेशन भी है अलग से,
2: हाँ, सबील कुरान का एक एप्लीकेशन है और सबील कुरान प्रो के नाम से। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हम लोगों की इस वक्त है, जिसको हम लोग जो हैं बाद में शायद और डिटेल में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक और चैलेंज जो हम लोगों से हमेशा सवाल किया जाता है वो म्यूज़िक के हवाले से, कि आप लोग जो हैं म्यूज़िक को पुश कर रहे हैं और म्यूज़िक को हलाल हराम है तो हलाल है तो क्या, यानी उनका इश्काल ये है कि भाई अगर म्यूज़िक आप बोल रहे हैं कि हलाल और हराम आपने बता दिया, अगर हलाल है फिर भी क्या ज़रूरी है,
1: ज़रूरी हलाल काम किया ही जाए
2: तो इसका क्या जवाब है?
0: हाँ, वगैरह आप लोग कल तैयारी कर रहे थे
4: तो शरी मसला है ना, तो अब वो हम जो शरी मसला आयतुल्लाह सिस्तानी या रहबर मौज़म का है वो तो वाज़े है कि म्यूज़िक ऐसा नहीं है कि सारी म्यूज़िक हराम है, बल्कि म्यूज़िक हलाल भी है, उसके शरायत मौजूद हैं कि वो म्यूज़िक के जिस जो मजालिस यानी जैसे कहा जाए लहव लैब की मजलिस से मुनासिब हो, लहव लैब की यानी जैसे कहा जाए हराम पार्टियों से, आसान में हराम पार्टी के जहाँ के ऊपर गैर, हाँ, जहाँ पर गाना बजाना हो,
2: महफिलें जो जिनसे हराम महफिलों की शबाहत आती हो वो म्यूज़िक जायज़ नहीं है। यानी हराम महफिल में मसलन जैसे डिस्कोटेक हो गया या आइटम गर्ल के सॉन्ग हो गए या इस टाइप के जो आपको लगे ये
5: जहाँ पर मिक्स जहाँ पे गुनाह करने का ज्यादा जो है वो पाया जा रहा है,
4: पार्टियां होती हैं वहाँ पर जो
6: मसाइल वगैरह सब, ये मसाइल मोमिनीन के लिए हल है।
1: असल चीज़ क्या है, वो कहते हैं कि ये बताइए कि भी इसमें कौन सी म्यूज़िक वो है कि जो हराम महफिलों से मखसूस है, ये आप बताइए हमको, इसका जवाब।
5: हर वो म्यूज़िक, वक़ार भाई आपकी बात कर, हर वो म्यूज़िक जो लहवी हो, मुज़िल हो, जो आपको अल्लाह की याद से गाफिल कर रही हो, वो म्यूज़िक हराम है।
1: वो म्यूज़िक
5: जो आपको अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर रही है, वो म्यूज़िक जो आपको अल्लाह की याद दिला रही है, अहले बैत की याद दिला रही है, वो जो है वो सही है, हराम नहीं है। हमारे जो मनकबतें हैं, जो हमारे हम लोग जो सॉन्ग्स तराने बनाते हैं, उसमें हम लोग उलमा को पहले दिखाते हैं कि आया ये म्यूज़िक जो है वो हमारे यानी हलाल है या हराम है। हम लोग इस ये सारे पॉइंट जो आयतुल्ला सिस्तानी या आयतुल्ला खामनई साहब ने जो जिक्र किए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको सुनते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लोग फैसला करते हैं कि इसे हमें,
4: यानी एक्सपर्ट की राय ली जाती है,
5: एक्सपर्ट की राय ली जाती है
4: जो इस फन के माहिर हैं। चूँकि यहाँ पर जॉन साहब आपका जो सवाल था कि कौन कैसे मालूम हो कि ये वाली म्यूज़िक हराम है, उसका जो तरीका बताया आयतुल्ला सिस्तानी ने भी और रहबर ने भी कहा है कि ये खुद आपकी जिम्मेदारी है, खुद आपकी जिम्मेदारी है कि आप आके जो है वो देखें। और अच्छा, आपको कहेंगे कि अच्छा मेरे एतबार से नहीं, आपका एतबार नहीं चलेगा,
2: उर्फ का एतबार,
4: आप आके उर्फ के जरिए से मुशख्खस करेंगे, आप उर्फ के जरिए से तय करेंगे कि आया ये म्यूजिक मखसूस है, मुनासिब है उस जो है वो हराम पार्टियों के या मुनासिब नहीं है।
3: एक सवाल
4: सिचुएशन जी,
7: मशहद गया था मैं हरम के सामने बिल्कुल और रोड में थे, लेकिन हम लोग सही है तो कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी के अंदर कोई म्यूज़िक लगा के उस बैठ के सुन रहे हैं वो, तो हम लोग जा रहे थे हरम की तरफ और वो एक आदमी आया था, वो गाड़ी में लाउड म्यूज़िक भी बिल्कुल वो डिस्को वाला म्यूज़िक था, सही है, वो जा रहा था, ऐसे नहीं था कि मसलन हाँ उसका कुछ ख़ास नीयत था, वो जा रहा था।

0: में अपना, क्योंकि रोड है ना हरम के नीचे से रोड चलते हैं अरशद का, तो वो निकल रहा था, एक लाउड म्यूजिक लगा के पीछे से उसका आवाज़ हम लोग को नहीं सुनाई दे रहा था, और हम लोग ने सुना। अच्छा वो म्यूजिक बिल्कुल डिस्को वाला म्यूजिक था।
1: सही।
0: अच्छा लेकिन उसके बाद जब भी मैं वो म्यूजिक को सुनता हूँ, क्योंकि ईरानी म्यूजिक था, मुझे हरम की याद आता है। तो ये क्या हो, ये कौन सा?
1: अच्छा,
2: म्यूजिक के सिलसिले में ईरानी गैर ईरानी कुछ नहीं, जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है।
0: नहीं आपने अभी बोला था कि मसलन अगर खुदा के याद आए या खुदा के याद नहीं आए, तो अभी मुझे हरम याद आता है जब वो म्यूजिक सुनता हूँ।
2: तो डिस्को

0: अच्छा हरम, अच्छा हरम याद आता है, मुझे तो हराम कह रही, हराम याद आता है। अच्छा डिस्को सुन के आपको हरम याद आता है,
1: वही म्यूजिक
0: उसके नीचे बज रहा था, वो
1: तो
2: वो म्यूजिक नहीं, वो म्यूजिक हरम से मखसूस थोड़ी हो गई। एक इंसिडेंट आपका हुआ वहाँ पे, अब आप जहन आपको,
1: क्योंकि ये भी था कि कभी कभी हम लोग ने ये भी आप लोग ने डिस्कस जब कर रहे थे, मैं कभी कभी सुनता था बीच में, क्योंकि इसमें तो मेरा कोई वो नहीं है, इंडिविजुअली राय नहीं है। तो आप लोग बोलते थे कभी कभी ऐसा होता है कि एक म्यूजिक शायद एक बंदे का हलाल हो, एक बंदे के लिए हराम हो,
3: एक माशरे के लिए, बंदे के लिए नहीं, एक माशरे के लिए नहीं। ईरान में मुमकिन है कि जो है वो हलाल हो, या
4: तशखीस मौजू जो है,
3: हाँ,
5: यानी मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो कहता है उर्फ के हिसाब से मेरे लिए ये म्यूजिक जायज़ है, ठीक है ना, मैं ये तशखीस दे रहा हूँ कि उर्फ के हिसाब से जायज़ है। एक बंदा कहता है मैं ये तशखीस दे रहा हूँ कि ये उर्फ के हिसाब से जायज़ नहीं, तो दोनों के लिए अलग होगा ना हुक्म,
3: मुकल्लफ खुद, इसलिए तो मैंने कहा खुद आपकी जिम्मेदारी है।
5: नहीं, वो जो जवान है वो इस्लामिक क्राइटेरिया को देखे, इस्लामिक लॉज को देखे, और उसको लग रहा है कि भाई ये म्यूजिक जो है वो मेरे लिए जायज़ है कि जायज़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पहली चीज़ तो म्यूज़िक अगर कोई देख रहा है, म्यूज़िक कोई सुन रहा है, ठीक है, और अगर वो म्यूज़िक इस्लामिक लॉज के हिसाब से उसे लग रहा है वो जायज़ है, वो सुने, जिसे नहीं लग रहा है वो ना सुने, ठीक है। लेकिन ये कि ज़बरदस्ती इसको कन्विंस करना या उसको कन्विंस करना, ये ज़रूरी नहीं है। आपको ख़ुद तशखीस देना है कि भाई ये जायज़ है कि जायज़ नहीं है। अगर इस्लामिक लॉज के हिसाब से आपको जायज़ है, वाजिब तो नहीं है
4: जी,
5: कि आपने बोला कि भाई ये फतवा हो गया जायज़ है, नहीं है वाजिब, आपको सुनना ही है, नहीं वाजिब नहीं हुआ, जायज़ है। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, नहीं सुनना चाहते नहीं सुने, कोई आपके लिए वाजिब तो है नहीं। तो इस्लामिक कुल्लन मेरे लिए जो चैलेंज है ना वकार भाई, वो ये है कि मैं एक जगह मजलिस पढ़ने गया था, तो मैंने वहाँ पर कार्टून्स की बात की, एनिमेशंस की बात किया, तो मैं मजलिस पढ़ के नीचे उतरा तो एक अंकल आए मेरे पास और बोले कि मौलाना इसी मिंबर से 40 साल पहले मैंने एक बहुत बुज़ुर्ग आलिम दीन का नाम लिए, बोले कि उनसे सुना था तस्वीर खींचना भी हराम है, समझे। तो आज उसी मेंबर से 40 साल के बाद आप तस्वीर तो छोड़ो, आप बोल रहे हैं कि एनिमेशन बनाना चाहिए और बच्चों को अहले बैत की बात एनिमेशन से सिखाना चाहिए, तो ये कैसे है। तो हमारे जवानों को ये समझना चाहिए कि जो इस्लामिक लॉज, इसको करेक्ट करिएगा, इस्लामिक लॉज जो हैं वो लॉ नहीं बदलते, लेकिन ज़माना बदलते बदलते उसके मिज़दाक बदल जाते हैं, यानी उसके एग्जाम्पल्स बदल जाते हैं। जो वाज़े तौर पर एग्ज़ाम्पल दी जाती है वो जीन्स की, कि औरतें जो हैं, जो पहले औरतों के लिए जीन्स पहनना मराजों के नज़दीक हराम था, आज से तकरीबन 30-35 साल पहले, लेकिन क्यों, क्योंकि उस ज़माने में जीन्स जो है वो उर्फ थी, मर्दों से मुतालिक जीन्स थी, यानी तो ऐसा तो फतवा चेंज नहीं हुआ। फतवा ये है कि जो लिबास मर्दों के लिए मखसूस है वो औरतों के लिए पहनना जायज़ नहीं है, और बरअक्स कि जो लिबास औरतों के लिए मखसूस है वो मर्दों के लिए पहनना जायज़ नहीं है। अगर ये फतवा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ज़माना आगे बढ़ा तो वो जो एग्ज़ाम्पल था जीन्स वाला, अब जीन्स इतनी आम हो गई कि मर्द और जीन्स मखसूस मर्दों के लिए नहीं रहा, तो फतवा वही है, लेकिन अब जीन्स औरतों के लिए जायज़
0: नहीं, मखसूस जीन्स ख्वातीन के लिए हैं, मखसूस जीन्स मर्द के लिए।
5: तो आज वो फतवा चेंज, इसी तरीके से म्यूज़िक भी हो सकता है। 20 साल पहले म्यूज़िक उर्फ में एक म्यूज़िक था, सिर्फ हराम महफिलों के लिए होती थी, लेकिन यही आहिस्ते आहिस्ते अगर आम हो जाए तो पॉसिबल है कि म्यूज़िक जो है वो 20 साल में 30 साल में, कानून चेंज नहीं होता है लेकिन वो उर्फ का हराम महफिल से उसका तनासुब अगर ख़त्म हो जाता है तो फतवा भी चेंज हो जाएगा। ये हमारे व्यूअर्स के लिए क्लियर होना चाहिए कि एक ज़माना था, अगर वो कुछ उलमा कह रहे थे भाई कि फ़ोटो नहीं निकालना चाहिए, ये नहीं निकालना चाहिए, वो उस ज़माने की उनकी तशखीस थी, लेकिन जैसे ही ज़माना बदला उलमा की, आज आयतुल्ला सिस्तानी, आयतुल्ला खामिनाई, तमाम मराजे तकरीबन उनकी नज़र ये है कि आप मीडिया को इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, AI को यूज़ करें, और मसलन म्यूज़िक के बग़ैर पॉसिबल नहीं आप मीडिया में काम करें, आप डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, आप जो भी बनाना चाहते हैं, म्यूज़िक आपके लिए आज ज़रूरी है। खूब, लेकिन वही कानून वही है कि आप इस्लामिक क्राइटेरिया, हलाल और हराम का क्राइटेरिया जो है वो आप लोग उसको फॉलो करें, अगर वो नहीं है तो फिर आप उससे परहेज करें।
0: ये मसला जो है नहीं, चांद के मसले की तरह से, जैसे कि कानून और उसूल बयान कर दिया है चांद के मसले में,
2: آغازستانی عطا اللہ خانی مہاراجہ کرام نے, اب وہ تشخیص دینا کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, پہلی تاریخ ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایسے ہی مہاراجہ کرام نے اصول بیان کر دیے ہیں. اب یہ اصول آپ دیکھیے, یہ کرائٹیریا یہ ہے, اب آپ کو تشخیص دینا ہے کہ یہ حلال حرام ہے یا

0: हलाल है।
1: और जो सवाल और एक और जो एतराज किया जाता है वो ये कि ठीक है आप म्यूजिक हलाल है और आप यकीन के साथ आप बना रहे हैं, आपने सारे क्राइटेरिया का लिहाज किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपने एक दफा बाप ये दरवाजा खोल दिया तो ठीक है ये हलाल है इसको सुनेगा, लेकिन उसके बाद जवान को आप रोक नहीं पाएंगे तो वो हलाल के साथ साथ फिर हराम भी सुनने लगेगा, चूंकि मौजू को तशखीस देना तो खुद उसकी जिम्मेदारी है और वो ये मौजू ऐसा है कि इसको आसान नहीं है इसको तशखीस देना कि कहाँ पे हलाल है कहाँ पे हराम है, तो क्यों आप ऐसा बाप खोल ही रहे, वो दरवाजा खोल ही रहे कि जिसमें हलाल के लेकिन वो फिर हराम में मुब्तला हो जाए।
2: एक तो ये है कि देखें हाँ हमारी जिम्मेदारी शरीयत को बयान करना है, ठीक है, ये तो आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामेनेई को भी पता है कि मैं अगर फतवा दूंगा तो फतवा देने के बाद उसका असर ये होगा कि मसलन वो पहले ये सुनेगा तो वो बाद में वो सुनेगा, तो आयतुल्लाह सिस्तानी आयतुल्लाह खामेनेई को भी ये अगर एहतियात की बात है तो उन लोगों ने भी बयान किया, हम सिर्फ उनके फतवों के हिसाब से अमल कर रहे हैं उससे आगे नहीं बढ़ रहे। दूसरी चीज़ ये कि हम जो हैं ये एक एक जज़ीरे में हम जिंदगी जी रहे हैं, हाँ एक के हम मसलन हमारे जवान जो हैं वो नहीं सुन रहे हैं और हमारे जवान जो हैं सुनने लगेंगे, और ये भाई रियल वर्ल्ड में है, हमारे जवान बरअक्स सोचें कि हमारे जवान जो हराम म्यूज़िक सुन रहे हैं हम कैसे उनको हलाल म्यूज़िक की तरफ ला सकते हैं, राधा देन हम लोग ये सोचें कि हमारे जवान कुछ भी नहीं सुन रहे हैं और वो हम बनाएंगे तो वो सुनने लगेंगे, ये जो है ये मुझे लगता है कि एकदम यानी कि वो लोग यानी मैं क्या कहूँ उनको यानी वो दुनिया के साथ ही नहीं है, वो ज़माने के साथ ही नहीं है, मेरे भांजे मेरी बहन के बेटे मैं उनको देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं, वो 16-17-18 साल के हैं मसलन, मेरे जो दूसरे लड़के लोग हैं 16 जेन जी हैं मसलन 20 साल से कम है, उनकी ज़िंदगी कैसी है, आपकी और मेरी तालिबे इल्मों की जिम्मेदारी है कि उनको उनके सामने दीन को हलाल तरीकों से इतना अट्रैक्टिव बनाएं कि वो दीन की तरफ अट्रैक्ट हों, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग ये जज़ीरे ही फिक्र से बाहर आएँ कि हमारे जवान जो हैं वो ये सुनेंगे तो फिर हराम करने लगेंगे, तो हम लोग पूरा क्राइटेरिया बयान कर रहे हैं कि अगर आपको शक है तो आप परहेज़ करें, ठीक है ना, अगर आपको शक है तो आप परहेज़ करें, अगर आपके लिए इस्लामिक क्राइटेरिया के हिसाब से कोई चीज़ जायज़ है तो वो जायज़ है, जो हराम है वो हराम है। वो हमारे वीडियो के लिए रुका हुआ है क्या कि यार एक वीडियो आएगा मौलाना सबीर का या सबील मीडिया का फिर मैं हराम करूँगा, ये टोटली नॉनसेंसिकल बात है, जिसको हराम करना है वो किसी के वीडियो के लिए नहीं रुका है, हम सिर्फ ये कोशिश करें कि हम हलाल चीज़ों को ऐसा बनाएं इतना अट्रैक्टिव बनाएं कि वो हलाल जो है वो लोग जो है अट्रैक्ट हों हलाल की तरफ।
3: कि मुझे याद है कि जब नोहे के कुछ पिछले साल था या दो साल पहले था जब जो मशहूर नोहे खान है ना एकदम से साथ साथ सब लोग ने म्यूज़िक के साथ
0: कई लोगों ने एक साथ निकाला था,
3: तो उस टाइम पे मुझे याद है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो एक हम लोग ने जो वीडियो बनाया था म्यूज़िक के बारे में वो वायरल हो रहा था उस वक्त
2: जी,
3: तो ये क्या अलग टॉपिक होगा या कि वही टॉपिक है क्या, मसलन आपने बोला कि ये सही है अब नोहे के ऊपर मीना का म्यूज़िक कोई लगाया तो वो कैसा होगा।
2: देखिए नोहे के ऊपर म्यूज़िक जो है वही उर्फ की बात है कि हमारी उर्फ में एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, जैसे मसलन ईरान में दफ बजाया जाता है, ठीक है, नोहे यानी नोहे के कुछ हिस्सों के ऊपर, तो उसमें मुश्किल नहीं है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई वो फीलिंग जो आपकी सौर देखिए दो टाइप के नोहे, एक वो है कि गम की फीलिंग देते हैं, अगर वो नोहे पे पीछे बेस लगा हुआ ऐसा जो आपको इमोशंस को और सौरों में तब्दील कर रहा है तो इसमें क्या मुश्किल है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा डाइजेस्ट करने के लिए, या बरअक्स एक नोहा रजज है कि आपको बोल रहा है कि मसलन मैं लड़ूंगा और मैं इमाम हुसैन की राह में हूँ और हज़रत अली अकबर कह रहे हैं कि मैं दुश्मन से मुकाबला करूँगा, उसके पीछे अगर कोई ऐसा बेस है म्यूज़िक का जो लोगों के इमोशंस को जज्बात को भड़का रहा है ताकि वो जंगी
0: जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों और तो क्या कहते हैं जो वैल्यूज़ हैं उनको वो अंजाम दें,
2: लेकिन अगर आप ऐसा नोहे पे ऐसी म्यूज़िक लगा रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि भाई नोहे की माहियत से हट के अब ये जो म्यूज़िक जो है वो डांस या कोई दूसरी जगह जा रहा है या मसलन हमारा जहन जो है वो नोहे से हट के या उसके गम या कयाम से हट के अब कोई और तरफ जा रहा है तो नेचुरल सी बात है वो तशखीस उसको देनी हो।
0: अच्छा नोहे में म्यूज़िक हलाल है या हराम है इसके लिए मैं एक ऐड भी करता चलूँ ना, सभी मीडिया पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है आप उसको देख सकते हैं
2: जी, मौलाना ने
3: क्लिक करें
2: मौलाना ने उसको रिकॉर्ड किया तो इनकी एक व्यू भी बढ़ जाएगी।
0: अहले बैत अलैहिस्सलाम के नामों को म्यूज़िक के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, हलाल और हराम म्यूज़िक का क्राइटेरिया और उसके कंडीशंस क्या हैं ये देखते हैं इस वीडियो में।
2: अच्छा, मेरे ख्याल से काफ़ी नोहे के वाले से
1: नोहे में मेरे ख्याल से यानी उर्फ का है, चूँकि अभी हमारे उर्फ ने वो एक्सेप्ट नहीं किया लिहाजा नोहे वगैरह में या इमाम हुसैन से रिलेटेड जो उसमें थोड़ा सा एहतियात

0: और ज्यादा जरूरी है
1: उर्फ के हिसाब से चलना वो ज्यादा
2: मेयार उर्फ है वहाँ पे।
0: मिसाल के तौर पे अभी मसलन इराक वगैरह में आम है वहाँ के, तो वहाँ शायद ये बात इशू ना हो, लेकिन हमारे उर्फ में अभी नौहे में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं
3: लेकिन
0: है।
3: ये चेंज भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल पीरियड ऑफ टाइम ये उर्फ बदल सकता है।
2: हमारे यहाँ का उर्फ जो है मिसाल के तौर पर जुलूस आए अजाम में आप देखें तबल बजते हैं और वो ढा जो बजती है दफ वगैरह बजता है, दमाम वगैरह जो जी हाँ अच्छा उसी एतबार से मतलब उस हद तक हमारी आवाम ने जो है कबूल किया हुआ
0: है। है खैर खुलासे ये कि ये बहुत
3: तो ये म्यूजिक के हवाले से हम लोगों का जो कुल्लन यानी आप लोग ऐड करिए खुलासा ये है कि हम लोगों का ये है कि रेड लाइन शरीयत है, मराज तकलीद है, फतवा है, रेड लाइन हमारी वो है उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे, ये हम लोगों के लिए क्लियर है। उसके आगे कोई अगर खुद अगर अपने तरफ से एहतियात करना चाहता है या मसलन हमें फोर्स करना चाहता है कि हम एहतियात करें तो हम एहतियात नहीं करेंगे, हमें जो शरीयत ने बनाए हमारी जो जिम्मेदारी है रहबर मुअज्जम ने आयतुल्ला सिस्तानी ने कहा है कि तुम्हें मीडिया को इस्तेमाल करना है दीन को बताने के लिए, अहले बैत के पैगाम को पहुँचाने के लिए और दुश्मन से मुकाबला करने के लिए, तो जितने हलाल अबजार टूल्स हैं वो हमें सब इस्तेमाल करने हैं ताकि हम जवानों को अट्रैक्ट कर सकें और ये दीनी मकसद को हम लोग पूरा कर सकें।
0: एक बात जमीर भाई बस आखिरी बात मैं एक फाइनल वर्ड बोल दूं कि म्यूजिक के ऊपर काफ़ी बहस हो गई, काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो गई है कि जो आपने बातों बातों में एक बात ये भी कही कि हम जवानों को अक्सर बोलते हैं कि मसलन ये हराम है, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, और कोई हलाल अल्टरनेटिव देते नहीं हैं, और जब जाहिर सी बात है जब तक नहीं मिलेगा तो हम रोक कैसे रोक सकते हैं, और फिर वही है कि वो खुद दिन खुश करूँ कि एक हलाल अल्टरनेटिव होना चाहिए इस तरह म्यूज़िक में चाहे हो। मिसाल के तौर पर हम लोगों को बोलेंगे मसलन नेटफ्लिक्स ना देखो, अमेज़ॉन ना देखो, लेकिन उनके पास फिर देखने के लिए क्या, उनको तो चाहिए ना, उनको इंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, वो थक के वो जॉब से ऑफिस से वहाँ से आ रहे हैं, तो उनको कुछ चाहिए कि वो ऐसी कोई चीज़ हो कि जहाँ वो बैठ के मसलन एक घंटा डेढ़ घंटा बैठ के फैमिली के साथ बैठे देखें और कुछ हो, तो यहीं से जब वो बात आ सकती है कि हम अपना जो वो है मिमिटो वाला आइडिया हलाल सिनेमा वाला प्रोजेक्ट उसको मैं चाहता हूँ कि आप बताइए थोड़ा सा।
3: मुस्तफा भाई
0: आप लीड कर रहे हैं बताइए
1: के बारे में।
2: हाँ नहीं, हलाल सिनेमा वाला
1: कोई बोलना है, नाम बोलना है।
2: हाँ बोलो बोलो।
1: अच्छा हलाल सिनेमा के बारे में एक आइडिया ये है कि जैसे आपने बताया कि इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म है जो उसके अंदर हलाल टाइप का वीडियोज़ मूवीज़ जो हम लोग सोचते हैं कि फैमिली बैठ के देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं, फैमिली के साथ ही सब कुछ देख सकते हैं, और क्योंकि जो अल्टरनेटिव है ये है कि अगर आप जैसे मैं हमारा एक वो है सर आमिर चीन से
3: चाचा का बेटा
2: नहीं फूफी का बेटा
0: फूफी का बेटा
1: हाँ एक फूफी का बेटा है वो अभी स्वीडन में रहते हैं, वो बार बार मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि यार आप पहले फिल्मों ईरान के जो एक प्लेटफॉर्म है वो चलता था हम ख़रीदते थे वो उधर बैठ के हलाल टाइप का मूवीज़ देखते थे क्योंकि सेंसर है उसमें इन बाकायदा नहीं, अगर बहुत अजीब सा मूवी भी हो उसको ईरान में आके क्या करते हैं काटते हैं अलग अलग सीन काटते हैं तो वो अच्छा पॉजिटिव मूवी बनते हैं, तो वो मुझे बोला था कि रास्ता ढूंढना क्योंकि अभी बंद हो गया है फिल्मों आप उस तरह चलते नहीं है और उसके अलावा जो अल्टरनेटिव है सब कुछ यानी मुश्किल आते हैं उसमें, तो हमने सोचा कि वैसे ये भी बताऊं कि चैनल बंद होने के बाद हमने ये सोचा
3: बोले आप जो भी
1: हाँ ये था कि हमने सोचा कि पहले ये तो है लोग डरते हैं फ्यूचर अपने फ्यूचर के लिए अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कि क्या होगा अगर हम लोग हमारे पास ऐसे कुछ ऑप्शन ना हो, तो ये तो काफ़ी पुराना आइडिया था, लेकिन जब हमारा चैनल बंद हो गया और चैनल बंद होने के बाद एक तो वो राबता भी बंद हो गया यानी सभी मीडिया और जो ऑडियंस है, तो ये वाला आइडिया और थोड़ा सा यानी ज़्यादा हमारे दिमाग में
3: क्लिक किया
1: कि यार ऐसा होना चाहिए कि हम लोग भी रावता रखें लोगों के साथ, दूसरा ये कि लोगों को वो प्लेटफॉर्म मिले, और तीसरा ये है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से अगर हम लोग जो प्रोडक्शन है इस्लामी प्रोडक्शन हलाल प्रोडक्शन उसको भी मदद करें क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे है कि बाहर काम कर रहे हैं जैसे मसलन एक एनिमेशन बनाने के लिए 200 मिलियन लगा रहे हैं लेकिन इस तरफ तकरीबन कुछ नहीं है, अगर भी है एक हमारा जो इंडिया पाकिस्तान में जो एक कल्चर है ये है कि अगर इस्लामी मूवी आ गया तो उसको फ्री में देखना चाहिए क्योंकि इस्लामी है सही है, तो इसीलिए हम लोग सोचा था कि अगर ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा वो सब चीज़ें आएगा इंशाल्लाह उसके साथ साथ, और ये हुआ कि हम लोग प्रोडक्शन में भी अलग अलग टीम को मदद करेंगे कि ये भी थोड़ा सा बूस्ट हो जाए प्रोडक्शन हलाल वाला प्रोडक्शन।
3: मैं इसको अगर खुलासे में बयान करूं तो ये है कि हम लोग का यानी इंशाल्लाह एक प्लान है कि हम लोग एक नेटफ्लिक्स के अल्टरनेटिव पे एक हलाल एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन बनाएं जहाँ पर आपके लिए वेब सीरीज़ हों, इस्लामिक फिल्म्स हों, हिस्टोरिकल फिल्म्स हों,

0: इन जनरल वेब सीरीज़ भी हों जो ईरान में प्रोड्यूस होती हैं, अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज़ में प्रोड्यूस होती हैं, उनको ला के उनको डब करके हाई क्वालिटी में, जिसके लिए हम लोग जो हैं वो करें, जिन्हें उसको आगे बढ़ाएं। इसके सिलसिले में पिछले एक डेढ़ साल में काम हुआ है, तकरीबन 20,000 मिनट के कॉन्टेंट हम लोगों ने अभी तक डब कर चुके हैं, हम लोगों के पास रेडी है। उसके लिए अभी हमारे कुछ चैलेंजेस हैं टेक्निकल तौर पर, उसका सर्वर लेना, सर्वर काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो हम लोग अभी उसके लिए फर्स्ट स्टेज पे ये कर रहे हैं कि हलाल सिनेमा को लॉन्च कर रहे हैं। हलाल सिनेमा यूट्यूब पे एक चैनल हम लोगों ने बनाया है, जिसके ऊपर हम लोग इस्लामिक मूवीज़ को डालेंगे, तो इमाम जवाद अलैहि सलाम की लाइफ के ऊपर तकरीबन 48 मिनट्स के 24 एपिसोड्स हैं, तो तकरीबन 1,000 मिनट से ज़्यादा का कंटेंट है, उसको सबसे पहले हम लोग लॉन्च करने का हमारा प्लान है। लेकिन आइडिया ये है कि हम लोग आइंदा में चाहते हैं कि हलाल एंटरटेनमेंट हो, नेटफ्लिक्स का ऑल्टरनेटिव हो, फाइनली उससे अगर इनकम जनरेट करते हैं तो जैसे मुस्तफ़ा भाई कह रहे थे कि हम फ्यूचर में जाके अपने प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, अपनी मूवीज़ बना सकते हैं जो हमारे जवानों को अट्रैक्ट करें, या मुस्लिम प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको हम लोग फंड करें, उनको सपोर्ट करें, ताकि वो फिल्म्स बनाएं, एनिमेशंस बनाएं जो हमारे जवानों के लिए उनकी हिदायत भी करें, उनको डायरेक्शन भी दें और उनको एंटरटेन भी करें। तो ये हम लोगों के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। यूसुफ़ मरियम के बारे में भी अगर बात करना चाहें तो यूसुफ़ मरियम जो है मुस्तफ़ा भाई, अभी हम लोगों के तकरीबन 23 एपिसोड्स हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके तकरीबन 60-70,000 डॉलर्स हम लोगों ने भी खर्च किया उसके ऊपर। उसके सीज़न टू में भी तकरीबन 60-70,000 डॉलर्स हम लोगों को और चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। बच्चों के एनिमेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तकरीबन अभी 12-13 एपिसोड्स हमारे जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं, और उसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। हम लोगों की एक रिक्वेस्ट होगी कि जो पेरेंट्स हमारी बात सुन रहे हैं, पेरेंट्स अपने फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आपका बच्चा जो है, खुसूसन अगर आपका बच्चा 4 से 8 साल के बीच में है, तो आप फीडबैक दें, क्या वो देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, अगर नहीं देखते हैं तो क्यों नहीं देखते, उनको क्या चीज़ पसंद है, ऑल्टरनेटिव क्या पसंद है वगैरह, ये डेफिनेटली आप लोग हमें बताइए, ताकि हम लोग और अपने प्रोग्राम्स को बेटर कर सकते हैं।
1: इसके लिए हम लोग को दो मदद भी चाहिए लोगों से, जो हमारे जो ऑडियंस है, एक तो टीचर्स है। हम लोग को यानी एक प्लान ये है कि हम लोग अलग अलग टीचर्स से रابطہ करके और आराम आराम से ही जो हमारा कंटेंट है, एनिमेशन वाला कंटेंट है, उसको आके लर्निंग वाला प्रोसेस में लाए हैं इसको, यानी आप टीचर्स या क्या बोलते हैं मुरब्बी को,
2: ट्रेनर्स
1: को, वो कैसे हमारे कंटेंट को यूज़ करके और बच्चे को एक नया तरीका सीखने का तरीका मसलन दे सकते हैं, तो उन लोग भी उसके लिए इंशाल्लाह हम लोग को मदद चाहिए कि ये एक कम्युनिटी बन जाए टीचर्स की, ठीक है। दूसरा ये है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं एनिमेशन में या कि वीडियो प्रोडक्शन में, ज़्यादा एनिमेशन में, जैसे मसलन स्क्रिप्ट राइटिंग में, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि सब जो यूसुफ और मरियम के स्क्रिप्ट है वो शायद ज़्यादा ईरानी कल्चर के हिसाब से बन रहे हैं, तो अगर हम लोग इंडिया के लिए बना रहे हैं या कि मसलन जो उर्दू ज़बान के लिए बना रहे हैं, तो वो वाला कल्चर ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए हम लोग को प्रोफेशनल, अगर कोई है हमारे ऑडियंस के बीच में जो प्रोफेशनली इसके ऊपर काम कर
3: स्क्रिप्ट लिख सकता है बच्चों के लिए,
1: डायरेक्टिंग भी, क्योंकि वो मुशावर मशवरा क्या बोलते हैं मशवरा के लिए या मुशावर के ज़रिए से आके मशवरा दे दें, या कि इस काम को इस तरीके से मसलन हमें मदद करें, तो ये भी है।
0: तो बेसिकली अगर आप टैलेंटेड हैं और आप सबील मीडिया के ओवरऑल सेटअप में, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो मवद्दत हो, चाहे अहकाम हो, चाहे वो आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास टैलेंट है, स्किल्स हैं, चाहे वो एक्टिंग से रिलेटेड हो, डायरेक्शन से रिलेटेड हो, स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड हो, एनिमेशन से रिलेटेड हो, हम लोगों के दरवाजे खुले हुए हैं, आप आइए, सबील मीडिया आपका है, अपनी न्यू आइडियाज़ को भी आप लोग इंशाल्लाह हमारे साथ लेके आइए और हम लोग उसको इन्वॉल्व करेंगे।
4: ये जो बातें अभी तक हुई हैं ये खाली अखलाकी बातें नहीं हैं कि आप आइए और हमारी मदद कीजिए, ये तरीके से हमारे ऊपर शरई ज़िम्मेदारी है। जब हमारे मुकाबले में हराम चीज़ें मौजूद हैं और लोग हराम चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो वो लोग जिनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, जिनके अंदर ये इस्तेदाद अल्लाह ने रखी है कि वो आके हलाल चीज़ हलाल कंटेंट बना के इंटरटेनमेंट के लिए अवाम के हवाले कर सकते हैं, तो उनके ऊपर शरान ये चीज़ वाजिब हो जाती है। हम लोगों ने ये चीज़ जो महसूस की है वो इसलिए महसूस की है कि हमारे गर्दन के ऊपर एक शरई फरीज़ा है कि लोगों को हराम से निकाल के हलाल की तरफ लेकर आएं। तो अब यहाँ पर खाली सबील मीडिया के मेम्बरान के लिए नहीं, बल्कि हर वो शख्स जिसके अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो इस राह में काम कर सकता है या सबील मीडिया का तआवुन कर सकता है, तो शरान अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए वो ये काम

0: अब इसमें प्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है, स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से भी हो सकता है, माली तआवुन के अतबार से भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें फ्री में नहीं होती हैं,
1: मैं
0: पैसे
1: जमीर
0: लगते
1: भाई
0: हैं
1: का एक
0: उसमें।
1: जुमला यहाँ पे ऐड कर दूँ
0: जी
1: कि मसलन दुश्मन जो है वो हमारे जवानों को बहकाने के लिए कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन हम अपने जवानों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर
0: यहाँ
1: रहे
0: पे
1: हैं।
0: मैं म्यूजिक के ऊपर तो काफी लंबा डिस्कशन हो गया। एक और एतराज के जो होता है वो ये कि आज से 2-3 साल पहले हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया था माह मुहर्रम के लिए, वी आर करबला के नाम से, कि जिसको काफी जवानों ने पसंद किया था, 50 से ज्यादा शहरों में, 30 से ज्यादा गाँव के अंदर, यानी कुल मिला के 100 से ज्यादा ऐसी सिटीज, छोटे और बड़े मिला के 100 से ज्यादा ऐसे शहर थे कि जहाँ पे लोगों ने, हत्ता बाज लोकेशन ऐसी थी कि जहाँ पे एक ही जगह पे, एक ही शहर में 2 से 3 लोकेशन पे वो वी आर कैंपेन हुआ, जिसको जवानों ने काफी पसंद किया। लेकिन उन सब के बावजूद कुछ जगह ऐसी भी थी कि जहां पे एतराज भी हुआ, और आपने जो इस कैंपेन का शियार और जो स्लोगन रखा था कि फील द पेन ऑफ इमाम हुसैन अलैहि सलाम, तो जो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा एतराज किया गया वो ये कि एक इंसान कैसे उस इमाम हुसैन के उस दर्द को महसूस कर सकता है, यानी क्या एक इंसान के अंदर वो ताकत, वो कुदरत है कि वो उस इमाम हुसैन के दर्द को महसूस कर सके।
1: जी देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ख़ुद ये वी आर कैंपेन के बारे में, कि ये कि आयतुल्ला सिस्तानी आयतुल्ला के दफ्तर से बिल्कुल इसके सिलसिले में वाज़ फतवा है कि जायज़ है। ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, मैं उस सवाल पे आऊँगा, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में वी आर कैंपेन जो है वो खुद हुआ,
0: रन हुआ
1: रन हुआ ख़ुद इमाम हुसैन के
0: अरबाइन
1: हरम में, ख़ुद आयतुल्ला सिस्तानी की तरफ से अपॉइंटेड जो इमाम जुमा हैं और जो वहाँ के मुतवल्ली हैं, उन्होंने इसको देखा और इसको अप्रिशिएट किया। तो शरई तौर पर इसकी कोई, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, शरई लाइंस जो हैं वो हमारे लिए क्लियर हैं कि जायज़ है, बल्कि उलमा ने इसको अप्रिशिएट किया है। तो पहली चीज़ तो वी आर करबला, जो नहीं जानते हो ये कि वी आर एक मशीन थी जिसके अंदर 3D एक वीडियो बनाया गया था, जो एक टीम ने बनाई थी ईरान में, और वो टीम ने, ऐसा आपको महसूस होता था कि आप करबला में हैं। जब आप वो वी आर मशीन लगाते थे तो आपको 3D में पूरा ऐसा लगता था कि इमाम
0: उस
1: हुसैन
0: सहराए करबला में आप
1: हाँ
0: मौजूद हैं।
1: मौजूद हैं, और ऊपर देखेंगे तो ऊपर आसमान है, नीचे ज़मीन है, राइट लेफ्ट, आप इस तरीके से आपको लगता है कि मैं मैदान में हूँ। जो पहला रिएक्शन जवान देते थे, आपने वीडियो देखे यूट्यूब
0: जी
1: का,
0: बिल्कुल,
1: कि जवान तीरों को रोकना चाहते थे, यानी जवानों के अंदर जो रिएक्शन आ रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर या हज़रत अब्बास पर जो हमला हो रहा है मुझे उसको रोकना है, जवान क्या रिएक्शन दे रहे हैं, जवान रो रहे हैं। हैदराबाद में या एक जगह और, एक खातून इतना रोती है, इतना रोती है देखने के बाद कि वो बेहोश हो जाती है, इमाम हुसैन का गम को महसूस कर रही है और वो बेहोश हो जाती है। तो अगर आप खुद, हमारे यहाँ रिवायतें हैं कि आप खुद रोएं या रुलाएं या रोने जैसा चेहरा बनाएं, तो उसके लिए ये अज्र बयान किया गया है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जवानों को रुलवाएं, जवानों को करबला की याद दिलाएं, जवानों को गिरिया करवाएं, तो इसमें कोई इश्काल नहीं है,
0: इसमें
1: क्योंकि
0: कहीं लिखा नहीं है कि मजलिस में या जो है वो फरशेजा बेखली मन
1: हाँ
0: बका आलम हुसैन
1: हाँ
0: वबका व तबा का,
1: जी बिल्कुल,
0: ठीक
1: तो
0: है
1: आप
0: ये
1: रुलाएं इमाम हुसैन के लिए रुलाएं। तो हमारे लिए बेस बिल्कुल क्लियर है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, लोगों को इमाम हुसैन से जोड़ना चाह रहे हैं, उनके गम से जोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ कैंपेन्स हुई वहाँ पर कैंपेन के अंदर एक हिस्सा लोगों को रुलाने का था, गिरिया कराने का था, जो हमारी बेस है आज़ादारी की, और तमाम अइम्मा ने इस पर ताकीद की है कि लोग रोएं, गिरिया करें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे। तो रिएक्शन जवानों का है कि बेतहाशा जवान रो रहे हैं वी आर कैंपेन को देख के, हाँ, हिंदू भी आए, हिंदू नॉन मुस्लिम्स आए। खैर, ये एक बात हुई। दूसरी बात ये कि हम लोगों ने ये कैंपेन का दूसरा हिस्सा जो था कि उसी के साथ हमने पैगाम इमाम हुसैन भी लगाया था, कि वो जवान जो रोएगा वो बाद में पैगाम भी देखेगा कि इमाम हुसैन ने क़याम क्यों किया था, अमर बिल मारूफ किया, अमर बिल, तो 6 मिनट की वो भी एक वीडियो दिखाई थी, ताकि वो जवान जब उस वहाँ पर आए तो रोए, इमाम हुसैन के गम को महसूस करें, साथ में पैगाम ले और जाए। अब यहाँ पर जो इश्काल है वो हम लोगों ने सब ने मिलकर डिस्कस किया था कि इमाम हुसैन के गम को कैसे महसूस कर सकते हैं। देखिए, असल ये है कि वो शिद्दत जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गम की है वो हम में से कोई नहीं महसूस कर सकता।
0: बेशक,
1: इमाम ज़माना जल्ला ताला फरजहू शरीफ जब देखते हैं तो खून के आंसू होते हैं, यानी वो सिर्फ देखते हैं, लेकिन हम जब फर्श अज़ा पे बैठते हैं, रोते हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं? हम इमाम हुसैन के गम को ही महसूस करना चाहते हैं ना। कोई ये नहीं कह रहा है कि वो 100% इमाम हुसैन का नौज़ुबिल्लाह गम को महसूस कर रहा है, नहीं, लेकिन हकीकत आज़ादारी क्या है, फर्श अज़ा क्या है, कि आप मसलन, लोग अरबईन में पैदल चल के जा रहे हैं, 90 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, पैरों पे छाले हैं, खून बहा जा रहा है, रो रहे हैं, मातम रो रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं या हुसैन या हुसैन।
2: पूछे वो जो दर्द है वो

0: फील कर रहे हैं
1: हाँ, तो पूछें कि क्या करना चाहते हो। तो अरबईन में हर जवान यही कहता है कि वो जो दर्द अहले बैत ने इस रास्ते पे सहा है उसका छोटा सा हिस्सा महसूस करना चाहते
2: हैं। बेशक यहाँ पे एक जुमला आमतौर से जाकिरीन भी कहते हैं, नवा खान हजरात भी जब नवा पढ़ते हैं और मंजर करबला का पेश करते हैं तो वहाँ पर एक लफ्ज़ कहते हैं, तसव्वुर शर्त है। ये जो तसव्वुर शर्त है क्या मतलब है? वो तसव्वुर हम कर सकते हैं करबला का जो हकीकी मतलब जो जो मजलूमी और जो मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम से नाम सलाम पर हुए नहीं, लेकिन अपने वजूद के अतबार से उसको हम तसव्वुर कर सकते हैं। तरीक़त यहाँ पर ये जो कह रहे हैं फील द पेन ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो इस चीज़ की तरफ इशारा है।
1: यानी आप अपने लिहाज से अपने लेवल से इमाम हुसैन के गम का एक हिस्सा जो है, जो आप इमाम हुसैन वहाँ गुजरे थे तो इमाम हुसैन पे क्या क्या दर्द हुआ होगा उसको आप महसूस करना चाहते हैं, ना कि 100% बल्कि डेफिनेटली। कोई अगर हमें आके कहे कि भाई मैं इमाम हुसैन के गम को महसूस नहीं करना चाहता हूँ, कौन शिया है जो कहेगा? हर शिया ये कहेगा कि मैं गम महसूस करना चाहता हूँ, लेकिन अगर लेकिन अगर कोई मुगालता कर दे और कहे कि नहीं आप लोग ये कह रहे हैं कि आप इमाम हुसैन के पूरे गम को महसूस करो, तो हमने कहा पूरे गम को, हमने कहा कि वैसे ही गम को महसूस करो नहीं, इमाम हुसैन के दर्द को एहसास करना ये कैंपेन का मकसद था और बिल्कुल शरीयत के मुताबिक सही जायज़। अगर कुछ लोग ये इश्काल करते हैं कि नहीं हमारे इंडियन कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है और वेस्टर्न कल्चर और ये कल्चर, खूब ये 100 से ज़्यादा शहरों में जवान आ रहे हैं, रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, ये क्या है? ये उर्फ़ है। आपके जवान जो हैं वो VR मशीन्स के लिए रुकते थे, यानी वो VR मशीन्स जो हैं वो हम लोगों ने ख़रीदी थी, तो VR मशीन एक शहर से दूसरे शहर जाती थी, दूसरे शहर से, तो जवान वहाँ इस्तकबाल करते थे, रुकते थे, और वो यानी ये क्या बता रहा है कि आपके जवान जो हैं उन्होंने VR कैंपेन को पसंद किया। और दोबारा वही बात है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दीन की तबलीग के लिए ये ज़रूरी है। जो लोग आज समझ रहे हैं आज समझेंगे, जो नहीं समझ रहे वो कुछ ज़माने के बाद समझेंगे कि आपको जो हलाल बाउंड्रीज़ हैं उसके अंदर शरीयत आपको इजाज़त देता है आप तमाम दीनी तमाम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें, शरीयत के मुताबिक आप जो है काम करें, इसके अंदर अच्छा, कोई इश्काल नहीं।
3: एक और जो चीज़ वहाँ पे फिर एतराज़ हुआ वो ये कि ये VR के जो एनिमेशन के ज़रिए जो हज़रत अब्बास का मसाइब दिखाया गया तो उसमें यह था कि अगर ये मसाइब अगर लोग देख लेंगे तो फिर उसके बाद अगर मजलिस में जब मसाइब पढ़े जाएंगे तो लोग गिरिया नहीं करेंगे, तो एक ये भी एतराज़ था कि मसलन मसाइब को ख़त्म करना है, क्योंकि भाई पूरे साल तो ये VR नहीं होंगे ना, ये कुछ दिनों के लिए, एक दिन दो दिन के लिए है, लेकिन वो मजलिसें तो हमेशा होती रहेंगे, और जवान जब एक बार उसने देख लिया वो मसाइब तो उसके बाद फिर उसके लिए वो सुन के मसाइब बहुत हल्का हो जाएगा, फिर वो रोएगा नहीं, गिरिया नहीं करेगा।
1: देखें इसका जो लोग ये बयान कर रहे हैं उनके पास तो कोई दलील नहीं है कि भाई ऐसा हुआ है, कोई सैंपल है, 1000 जवान को हमने देखा ऐसा हुआ, 100 जवान ने हमको आके कहा ऐसा हुआ, वो उनके ख्याल है, उनका ख्याल है जिसकी कोई बेस नहीं है, यानी कोई इस्तेदलाल में कोई बुरहान पेश नहीं कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये दलील है, हमारे पास
2: इतने तजुर्बा, इतने लोगों ने आके कहा,
1: तजुर्बा है हमारे पास, कोई बुरहान, कोई हमारे पास लॉजिकल फ्लो है या हमारे पास कोई रिसर्च है, कोई हमारे उनके पास नहीं है, एक उनकी
3: एक सोच है, बस
1: एक सोच, एक ख्याल है बस। आपका ख्याल बहुत मोहतरम है क्योंकि आपका ख्याल है। अब दूसरी चीज़ है जवानों के तजुर्बे, जो जवान VR करबला में गए हैं आप उन 100 जवानों का इंटरव्यू लीजिए, हर जवान जो मुझे मिला ना वो कहता है कि अब जब मैं गिरी, अब मैं मसाइब सुनता हूँ ना तो मुझे वो दर्द का एहसास होता है जो हज़रत अब्बास ने, मैं अब मसाइब में ज़्यादा रोता हूँ। खूब जवान जो देख रहा है वो बोल रहे हैं मुझे दर्द ज़्यादा होता है, आपने नहीं देखा और आप बोल रहे हैं कि मसाइब पे दर्द कम हो जाएगा।
4: ये जो जॉन साहब ने कहा था ना तसव्वुर शर्त है, तकरीबन सब जो है जो भी मसाइब में पढ़ते हैं हम लोग कहते हैं कि तसव्वुर शर्त है, तसव्वुर कौन सा शर्त है? इससे पहले किसी ने पेश नहीं किया था कि क्या तसव्वुर करें, हर एक इंसान अपने एतबार से तसव्वुर करता था मैदान करबला, लेकिन यहाँ पर इस VR में आके तारीख के औराक से चीज़ें निकाली गईं और उसको मुस्तनद निकाली गईं और फिर उसके बाद से उसको जो है वो वीडियो में बयान किया।
1: ये जो है मैं इसको दोबारा यही कहूँगा कि देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि शरीयत, आप देखें बार बार मैं कि शरीयत हमारे लिए रेड लाइन है, अगर शरीयत इजाज़त देती है आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आप जवानों को दीन से नज़दीक लाएँ। क्यों जवान रो रहे हैं, क्यों गिरिया कर रहे हैं? क्योंकि हज़रत अब्बास से मोहब्बत करते हैं। इमाम हुसैन एक हिंदू लड़का रो रो के बाहर निकल रहा है, कह रहा है कि मैंने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम ले रहा है, इमाम हुसैन का नाम ले रहा है, गिरी

0: किया कर रहा है, रो रहा है, क्यों? क्योंकि वीआर ने उसके अंदर से वो जो उसके अंदर जो इमाम हुसैन
1: उसे भी इमाम हुसैन से कनेक्ट
0: करा दिया। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई मसलन अभी मैं एग्जांपल दूंगा लेकिन शायद वो आप लोगों को लगेगा वो है, लेकिन जैसे यहूदियों ने होलोकॉस्ट जो है उसका मेमोरियल बनाया, वहाँ वीडियोज़ लगाए, ये किया वो किया, तो जब इंसान वहाँ जाता है बाहर निकलता है तो होलोकॉस्ट को लेकर बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला और उनके दर्द को हमने नॉन मुस्लिम्स तक नहीं पहुंचाया, हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, हमने कोई इंडिया में ऐसा बड़ा म्यूजियम नहीं बनाया जहां पर एक कोई नॉन मुस्लिम आए और हम पूरे वाकये करबला को उसको उसके अंदर वहां पर पूरा उसको दर्शा के बताएं, जब वो बाहर निकले तो उसको समझ में आए कि क्या हुआ करबला में, इमाम हुसैन के साथ क्या जुल्म हुआ। तो हम चाहें ना चाहें, आज कल 50 साल बाद, 40 साल बाद, 100 साल बाद हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। अब क्योंकि हमारे पास पैगाम बहुत मजबूत है, हमें जो ज़रूरत है वो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है कि इस मजबूत पैगाम को हम लोग पहुँचा दें। एक फाइनल चीज़ मैं कहना चाहता हूँ जवानों को, अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि भाई इख्तलाफ हो सकता है तो आप परहेज़ करें, ये वाजिब तो नहीं है। हमने कुल्लन जो नतीजा लिया वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें लगता है कि गलत है, लेकिन हमने ये नतीजा लिया कि
1: नतीजा लेके रोक दिया जाए इस कैंपेन को,
0: यानी उसको अगले साल नहीं करने का रीज़न ये था कि इसका नहीं कि हम नहीं करना चाहते हैं या गलत है, नहीं, हम कुल्लन कौम के अंदर इख्तलाफ नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं कौम के अंदर ग्रुपबाजी हो, एक दूसरे के खिलाफ लोग खड़े हों, तो हम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के भाई एक ठीक है एक चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ नहीं, लेकिन कम से कम कौम टुकड़ों में नहीं बटेगी।
2: लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोगों ने रोक दिया तो पब्लिक की तरफ से या मुमिनीन की तरफ से डिमांड नहीं हुई, बहुत डिमांड हुई इस साल, क्यों नहीं कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा
1: हर साल डिमांड हुई।
2: और मैं एक नुकता और करना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि मिसाल तौर पर अगर जो है इसको बयान करेंगे तो लोग मजलिसों में नहीं आएंगे, मसाइब जो है दिल सख्त हो जाए उनके, मंजरकशी करते हैं हम लोग मुख्तलिफ जगहों पर, इंडिया में मंजरकशी होती है, उससे दिल सख्त नहीं हो रहा है, वो दरअसल हो ही इसलिए रहा है कि ज़्यादा नज़दीक हो जाएं। या आप एक जफर पर एक नुक्ता और कहना चाहेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मोमिनीन यानी जिन लोगों ने एतराज़ किया है उनमें से हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं जो हमने देखा उनमें अक्सर लोगों ने वीआर असल में देखा ही नहीं और उन्होंने एतराज़ कर दिया, या उन तक खबर पहुँची तो उन्होंने एतराज़ कर दिया कि ऐसा है, जबकि हकीकत ये है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ करना चाहते हैं और आप को लगता है फैसला देना चाहते हैं कि चीज़ गलत है तो उसके बारे में तहकीक करें, जाने कोशिश करें, ठीक है तब आप एतराज़ करिए, तो वो भी आपका एतराज़ जो है वो काबिल कबूल होगा। यहाँ पर एक जहीर भाई ने रेडलाइन बयान कर दी शरीयत, मैं यहाँ पर मुमिनीन से ये कहना चाहूँगा सबील मीडिया का एक जो तशख्स है और उसकी जो एक ख़ासियत है वो ये कि कोई भी यानी 100% हमारी कोशिश ये होती है, बहरहाल मासूम नहीं है लेकिन कोशिश हमारी ये होती है कि सबील मीडिया के किसी भी चैनल से कोई भी चीज़ अगर जाती है तो उसके पीछे एक्सपर्ट होते हैं, उसके पीछे एक ऐसी टीम होती है जो उसको वेरीफाई करती है एक्सपर्ट की, शरीयत के मुताबिक होती है, कोई काम हम ऐसा नहीं करते हैं कि जिसमें एक्सपर्ट ना हो और शरीयत की रियायत ना की जाए, ये सभी मीडिया की खासियत है।
1: आपकी बात को फाइनल कंक्लूड करते हुए और आप दोनों की बात को मुकम्मल करते हुए कि वो लोग जो कह रहे थे कि मजलिसों में इसका असर नहीं फिर देखेंगे देखा जाएगा, अगर यह कैंपेन हमने 3 साल पहले किया था और जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि 100 से ज़्यादा शहरों में छोटे बड़े शहरों में ये हुआ, ठीक है अगर ये वैलिड होता ये बात ऐसी होती तो ऐसा होना चाहिए ना कि अगले साल वही 100 से ज़्यादा वो जवानों ने जो वीआर देखा वो मजलिस में अगले साल नहीं रोते या वो नहीं जाते, वो कहते हम पे असर नहीं हो रहा मजलिसों का, जबकि ऐसा नहीं है, वो अगले साल मजलिसों में गए, वीआर तो नहीं हुआ अगले साल लेकिन मजलिसों में गए, वो रो भी रहे हैं, उसके बाद पिछले साल अभी मुहर्रम हुआ फिर भी वीआर नहीं हुआ लेकिन वो उसी तरह से मजलिसों में जा रहे हैं वो, तो ये बिल्कुल ही एक सोच है जैसे कि उनका एक ख्याल था कि ऐसा होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है वो
0: इस्तेदलाल। देखिए जब आप ख्याल पेश करें तो आपके पास इस्तेदलाल होना चाहिए, आपके पास रैशनल प्रूफ्स होने चाहिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है आपको लग रहा है आपकी सोच आपके, लेकिन आपके लिए हुज्जत है, हमारे लिए हुज्जत मरजे तकलीद है, आयतुल्लाह सिस्तानी बोल रहे जायज़ है, आयतुल्लाह खामेनाई बोल रहे जायज़ है, हमारे लिए जायज़ है, हम उसको करेंगे जो हमारे मरजे तकलीद बोल रहे हैं, हमारे लिए बिल्कुल ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए।
2: यहाँ पर एक बात थोड़ी सी बात सभी मीडिया के बारे में कर लें क्योंकि हम लोग प्रोग्राम के बारे में बात की है, सभी मीडिया के बारे में बात करते हैं, जब चैनल हमारा पहले यानी डिलीट नहीं हुआ था तो हमारी रीच ज़्यादा थी, ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच रहे थे, उसके बाद हमारे लिए क्या क्या रुकावटें आईं आगे बढ़ने के लिए, अगर इस पर थोड़ा गुफ्तगु हो जाए, मुजफ्फर भाई आप बताएं इस सिलसिले में।
1: जी मेरे ख्याल से एक सबील मीडिया की एक अच्छी रीच हो गई थी तकरीबन 3.5 लाख तकरीबन सब्सक्राइबर हो गए थे सबील मीडिया के, ओवरऑल हमारे 8 लाख से ज़्यादा, 8.5 लाख तकरीबन, और

0: पांच चैनल्स को मिला के हमारे सब्सक्राइबर थे, और उसके बाद फिर वो जो हादसा पेश आता है हमारे साथ कि जब हम ये वॉर होता है और हम रैबर की एक स्पीच डालते हैं, बहरहाल उसके बाद जो है यूट्यूब एक्शन लेता है हमारे सारे चैनल्स के ख़िलाफ़ और हमारे सारे चैनल्स को बंद कर देता है।
1: सबील टून्स का भी एक साल बाद नहीं, एक कुछ महीने बाद।
0: अच्छा, सबील टून्स का कुछ महीने बाद बंद हुआ। हाँ, उसी टाइम बंद नहीं हुआ था। तो यकीनन वो बहुत हार्ड पीरियड था और वो ज़माना बहुत सख्त था हम लोगों के लिए, ख़ासकर इमोशनली काफ़ी वो था।
2: शौक थे सब लोग,
0: शौक हो गए थे, बिल्कुल शौक हो गए थे। मैं और नकीब तो रास्ते में थे और अभी हम लोग घर पहुँचे भी नहीं थे कि पता चला कि चैनल डिलीट हो गया। और फिर घर पहुँचे, फिर नकीब भाई अपने घर पहुँचे तो नकीब भाई तो इतने थे कि फ़ोन करके कह रहे थे वापस चलते हैं ऑफिस। तो मैंने ज़मीर भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा कि हम लोग वापस आ जाएं क्या? तो ज़मीर भाई ने कहा कि नहीं, अभी आके भी क्या करेंगे आप लोग, जो ईमेल करना था, जो लीगली एक्शन लेना था, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दुआ करें इंशाल्लाह कि चैनल वापस आ जाएगा। और हम लोग ने कई कोशिश की अलबत्ता इस हवाले से कि वो चैनल हमारे रिट्रीव हो।
2: दूसरों ने भी फायदा उठा लिया, सोशल मीडिया के नाम से फेक चैनल्स भी उस पे आ गए।
0: तो हमारे तो ये मेरे और नकी भाई की हालत तो ये थी। आप लोग अपने अपने दिल का हाल बताइए, क्या
2: सभी हुआ? सभी क्या हालत है, सब शौक थे क्या होगा आगे, क्या होगा, इतने ऊंचाई पर पहुंचने के बाद एकदम से जीरो पे आ गए उसके बाद। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ है, सभी जो मेम्बर्स वहाँ पे मौजूद थे उस वक्त ऑफिस में, जो चीज़ देखने में आई वो ये कि नाउम्मीद कोई नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, एक नुकसान हुआ, ये तजुर्बा हमारे साथ हुआ, एक नई चीज़ हमने सीखी उसमें इंशाल्लाह, लेकिन अल्लाह फिर मदद करेगा। और उसके बाद पांच चैनल थे, फिर 11 चैनल हो गए, फिर काम और तेज़। अभी अगर आप लोगों ने यकीनन इस बात को मुशाहिदा किया होगा कि उसके बाद जो ग्रोथ हुई है सभी मीडिया के अंदर, जो तजुर्बे में ग्रोथ हुई है, जो क्या कहते हैं बच्चों के वाले फील्ड में जो ग्रोथ हुई है, किस तरीके से इस्तकबाल हुआ यूसुफ और मरियम का, यानी दूसरे चैनल के साथ साथ, यानी हम मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद से और ज़्यादा तरक्की सभी मीडिया को मिली है, और ज़्यादा मजबूती मिली है, इरादा और ज़्यादा मुस्तहकम हुआ। और ये सब वाक़ नाम ज़मान अजलो शरीफ की इनायत है, अल्लाह करम इसमें है। तो हम लोग तो वाकई नाउम्मीद नहीं हुए थे। बहरहाल
1: एक बात है, यहाँ डिलीट होने के बाद शायद उससे पहले हम लोग ऐसे ग्रो करते जा रहे थे, सही, और उस वक्त एक ऐसे कॉन्फिडेंस भी बन गया था कि हाँ यार यही है रास्ता, अब हम लोग जाएंगे ऐसे आगे जाएंगे, हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, हम लोग को सब कुछ पता है,
2: एक इत्मीनान हो गया था।
1: इत्मीनान हुआ था जब डिलीट हो गया। तो हम लोग उस वक्त, मुझे याद है कि हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि कोई बात नहीं, डिलीट हो गया, एक महीने के अंदर ऐसे वापस आएंगे।
0: ये मैं आने वाला था इस जगह पे कि जब हमारी आपने शुरू कर दिया, मैं इससे पहले कुछ और पूछना चाह रहा था, लेकिन जब ये अभी मुस्तफ़ा भाई ने छेड़ दिया तो इसी से शुरू करते कि जब हमने ये तय किया कि हम नए चैनल बनाए जाए, तो बहुत जब बातें करते थे तो बहुत कॉन्फिडेंस से कहते थे कि वजन ये 50,000, हम एक महीने में 50,000 हो जाएंगे और एक लाख जो है 2 महीने तक हम इंशाल्लाह 1 लाख तक पहुँच जाएंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं, क्यों?
1: वही तो हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि अब हमारे पास जो था इतना, यानी अच्छे हम लोग काम कर रहे थे और काफ़ी था वही चीज़ जो हमारे पास था, तो अब हम लोग आराम से अपने पहली जगह पे वापस आएंगे। तो जब हम लोग पहुँचे नहीं उसमें, अब हम लोग को एक वो हो गया, क्या बोलते हैं, एक
3: रियलिटी चेक।
1: हाँ, एक रियलिटी चेक हो गया। तो हमें तो समझ में आ गया यार नहीं, ऐसे भी नहीं हो सकता कि मसलन अब, यानी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पता चल गया कि नहीं ऐसे नहीं, इतना भी आसान नहीं है, अब हम लोग को और भी काम करना चाहिए,
2: ओवर कॉन्फिडेंस भी होने की ज़रूरत नहीं अपने लिए भी। एक बात
1: भी, अभी कितना साल, 2 साल हो गए ना, अभी भी हमारा अलग अलग चैनल पे, हत्ता वो किड्स के चैनल भी, यूसुफ हमारे मरियम के चैनल्स पर भी, उसमें भी हम लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी हद। इन्हें काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग को पता भी नहीं है क्यों नहीं हो रहा है यार, अच्छी चीज़ है, पता नहीं हम लोग एडवर्टाइजिंग
3: चल क्यों नहीं,
1: चल क्यों नहीं रहे, समझ भी नहीं आ रहा। तो ये मेरे ख्याल में एक लेसन था इसमें, वापस आके अब हम लोग बार बार जब मीटिंग में रखते हैं ये कि अब क्या करना चाहिए यार, क्यों नहीं हो रहा, हम लोग को क्या सीखना चाहिए, हम लोग यानी किस चीज़ के ऊपर तवज्जो करना चाहिए हम लोग को।
0: हाँ, यानी वो हमसे कहाँ पे वो मिस्टेक हो रही है कि हम नहीं पहुँच पा रहे हैं?
4: देखिए, मुझे जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुस्तफा भाई इसको करेक्ट करिएगा अगर, कि हम लोगों ने ये समझा कि यूट्यूब पर लोग सबील मीडिया देखने आ रहे हैं, जबकि हकीकत में लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं और सबील मीडिया को भी देख रहे हैं। अगर सबील मीडिया नहीं दिख रहा है उनको
2: तो फर्क नहीं पड़ रहा,
4: तो उनको उनकी ज़िंदगी चल रही है, यानी उन लोग सर्च करके खुद सबील मीडिया को ढूंढ नहीं रहे, एक तादाद ढूंढ रही है। जैसे हमने, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ, यानी हम लोग ने यूट्यूब के, हम लोग ने कैंपेन किया, पहले दिन ही 5,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर पहले दिन ही लोग आए, ऐसा नहीं कि जवान नहीं जुड़े हुए, 5,000 से ज़्यादा पहले दिन सब चैनल्स का हो जाना

0: खुद एक वो है। लेकिन हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि 1 लाख से ज़्यादा, तो हमें ये समझ में आया कि हमारे और मोमिनीन के दरमियान यूट्यूब है, जब तक यूट्यूब नहीं दिखाता उनको तो वो हमें नहीं देखते, यानी वो खुद हमें देखने के लिए नहीं आते। तो जो हमारे व्यूवर्स थे उसमें से 10% ऐसे थे जो हमें सर्च करके आते थे, लेकिन 90% ऐसे व्यूवर थे जो ब्राउज फीचर्स के थ्रू या दूसरे फीचर्स के थ्रू आ रहे थे। तो हम लोग जब तक लोगों की ज़िंदगी के अंदर इतने ज़रूरी ना बन जाएं कि हम लोगों के ना होने से लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़े, तब तक लोग हमें सर्च नहीं करेंगे। तो अभी लोग हमें देख रहे हैं क्योंकि हम ऑप्शन है उनके लिए यूट्यूब पे, लेकिन अगर हम नहीं हैं तो ये जो 3.5 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स थे, इसमें से कितने लोग मिस कर रहे थे हमें। अभी भी हम लोग तकरीबन मेरे ख्याल से 60,000 सब्सक्राइबर पे यूट्यूब पे जो है, सबील मीडिया पे, वैसे तो पॉडकास्ट पे भी हैं, किड्स में भी है, सब मिला के हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर के आसपास इस वक्त पहुंच गए हैं। लेकिन ओवरऑल हम लोग पहले 8.5 लाख सब्सक्राइबर पे थे। तो ये है कि हम लोग, मुझे लगता है कि जो चैलेंज है वो यही है कि लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक जो व्यूअर्स हैं, अगर आपको यूट्यूब पे नहीं दिख रहा है अहकाम, तो आप सर्च करें अहकाम, आप खुद सर्च करके आए। तो जो व्यूअर सर्च करके आ रहा है वो हमारा व्यूअर है, लेकिन जो यूट्यूब रेकमेंड कर रहा है वो यूट्यूब का व्यूअर है जो हमें भी देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम लोग जो हैं वो यूट्यूब के व्यूअर ना बने, यानी हम लोग के ब्रांड के अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि आइंदा में अगर सबील मीडिया डिलीट होता है, तो अब जो हम लोगों ने वेबसाइट की बात की कि हमारे पास अभी वेबसाइट स्ट्रांग नहीं है, तो अगर आप में से वेबसाइट डिज़ाइनर्स हैं, फ्रंट एंड बैक एंड सब लोग हैं, तो आप लोग ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें। ऐप के ऐप क्रिएटर्स हैं तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करें कि जो हमारा कॉन्टेंट है उसको हम लोग नए मीडियम से कैसे हम लोग लोगों तक पहुँचा सकें। लेकिन डेफिनेटली जैसे मुस्तफ़ा भाई ने कहा कि लर्निंग एक्सपीरियंस था, हम लोगों ने सीखा ग्रो करने के लिए, और अभी भी हमें लग रहा है कि हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है।
1: बिल्कुल, अभी भी जाहिर सी बात है, ये वीडियोस बनाना और ये पैगाम को पहुंचाना, इनको बनाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमें ढूंढना, सबील मीडिया को ढूंढना, सबील मीडिया के सारे चैनल्स को ढूंढना, सर्च करके यूट्यूब पे आना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और सिर्फ इस तरह से भी ना हो कि आके खाली सब्सक्राइब करो, कोई वीडियो ना देखे, चूँकि फिर यूट्यूब को भी लगता है कि ये बॉट है और फिर जो है वो उसको भी कम कर देता है। तो अगर आप सर्च करके यूट्यूब के हमारे जो सारे चैनल्स की एक लिस्ट आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो आप सारे चैनल्स को सर्च कीजिए, पहले कोई वीडियो देखिए, कोई 2-4 वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यूट्यूब का ऐसा न लगे कि एक आर्टिफिशियल बॉट है कि जो ये काम कर रहा है।
0: जी, मेरे ख्याल से आज काफ़ी डिस्कशन हुआ, फर्स्ट सेशन के लिए काफ़ी है। अगर कोई और बात, नकी भाई अगर आप ऐड करना चाहते हैं।
2: कम बोले नकी भाई, आप
0: अगर नकी भाई कोई
3: नहीं, आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मैटर सही से दे दिया, इसलिए हम लोग खामोशी से महव थे आप लोगों की गुफ्तगू सुनने में।
4: मतलब इतनी अच्छी बातें कर रहे थे कि हमें सुनना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लिहाजा आप जो है हमने उसमें ज़्यादा दखल नहीं दिया कि आप लोगों का फ्लो जो है।
0: काश
2: यहाँ पे एक बात रह गई है, वो ये कि सबील मीडिया का आपने कहा कि एक ही दिन में 5,000 सब्सक्राइबर आ गए, सभी मीडिया के चैनल एक ही मरतबा डिलीट नहीं हुआ है, वो एक मरतबा तो पूरा वाला डिलीट हुआ था, हम लोगों ने 3 बार ट्राई किया और 3 बार उसको डिलीट किया, पहले 5,000-6,000 तक पहुंचने के बाद फिर वो डिलीट हुआ। तो एक वजह ये भी है कि इतनी तेज़ी के साथ जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये उठ के जाएगा,
1: जी उसी जगह सब सब्सक्राइब कर रहे थे लोग,
2: हाँ नहीं वो जो डिलीट हुआ है, यानी 5,000 पहुँच के 6,000 पहुँच के डिलीट हो जाना और फिर से ज़ीरो से शुरू करना, 3 बार ऐसा किया, ये 4थी बार ऐसा हुआ कि अब जो चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं।
0: जी, अगर आपने लास्ट तक ये
3: डिस्क है कि दोबारा से डिलीट हो जाए,
2: हाँ है डिस्क मौजूद है,
0: अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा है तो आप लोग सजेशंस दीजिए कि हमें कैसे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, आप क्या देखना चाहते हैं कि हमारे वीडियोस जो हैं लाखों मोमिनीन तक पहुँचें। हमने भी AI की टीम बनाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी हम वीडियोस बना रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं, अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, लर्न करने की भी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में भी हमने ऑफिस अभी खोला है, जहाँ पर अगर यूथ हैं, जवान हैं आप, और अगर आपके पास आइडियाज़ हैं यूट्यूब पे क्या करना चाहिए, अगर आपके पास आइडियाज़ हैं तो आप आइए हमसे बात करिए, हम लोग हाज़िर हैं इंशाल्लाह, हम मिलके इंशाल्लाह कौम के लिए काम करेंगे। शुक्रिया आप लोगों का जो आप लोग सब जुड़े, यहाँ से लेके वहाँ तक जितने हमारे साथी हैं।
4: चलिए भाई, मैं सिर्फ एक आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर जाइए और YouTube पे मवद्दत प्रोडक्शन को जो है सर्च कीजिए और आके जो है उस पर कोई एक वीडियो देखिए, हमारे तराने उसमें हैं, सरबाज़ हुसैनी हैं, अनादमी फ़लस्तीनी, बहुत सारे तराने हैं और नोहे हैं।

0: सबीले मवद्दत पर, जो पुराने नौहे थे हमारे या जो पुरानी मनकबतें थी, वो सबीले मवद्दत नाम के एक ओल्ड डाटा के नाम से हमने चैनल बनाया है, उस पर अवेलेबल है, आप उस पर देख
1: जी,
0: सकते हैं।
1: मैं खुद भी एक बात कहूँगा जवानों से कि हम लोग बहुत बार कंप्लेन करते हैं कि ये नौहे खान एक्टिंग करते हैं, ये नौहे खान ऐसे हैं, वो वैसे हैं, लेकिन आप ऑल्टरनेटिव्स नहीं क्रिएट करते। सबीले मवद्दत ने ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने की कोशिश किया था। जब चैनल्स डिलीट हुए तो मुझे लगा सबसे ज़्यादा नुकसान जिस चैनल को हुआ वो सबीले मवद्दत था, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से सबीले मवद्दत को वहाँ तक पहुँचाया था, और पुराने नौहे जो हैं दोबारा फिर से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर यूट्यूब जो है कॉन्टेंट रीयूज़ का, हमारा ही कॉन्टेंट, हमें ही कह रहे हैं कॉन्टेंट रीयूज़ कर रहे हैं आप, तो हमें आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो हमारे लिए एक चैलेंज है सबीले मवद्दत यूट्यूब चैनल और मवद्दत प्रोडक्शन, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। एक नौहा मुझे बहुत पसंद है जो हज़रत सकीना का नौहा है, जिसमें हज़रत सकीना को एक अलग अंदाज़ में पेश किया गया है कि हज़रत सकीना अपने बाबा से कह रही हैं कि मैं लबों को सी लूँगी,
0: मैं तनहा
1: मैं
0: जील
1: तनहा जी लूँगी,
0: लबों
1: लबों
0: को
1: को
0: सी
1: सी लूँगी।
0: लूंगी।
1: यानी वो हज़रत सकीना आके अपने बाबा से कह रही हैं कि आप जाइए, आप कुर्बानी दीजिए और आप इमाम अल्लाह की राह में कुर्बानी दीजिए, मैं सब्र करूँगी, मैं मुजाहिदा हूँ। एक अलग अंदाज़ से ये नौहा पेश किया गया है, और भी बहुत सारे नौहे हैं। कोशिश होती है कि अहले बैत के कलाम मकसद के तहत इन नौहों को उलमा लिखते हैं, तो आप ज़रूर इस नौहों को देखें। एक मेरी सॉरी आपकी बात एक मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है हमारी बहनों से,
2: ये नौहा जो है
1: क्योंकि
2: वो क्या कहते हैं वो हमारा नहीं था, ये अंजुमन
1: हाँ
2: गुंजे मजलूमिया फैज़ाबाद जहरन जो
1: जी
2: है उसका नौहा था, उन लोगों ने दिया, लेकिन उसको बहुत अच्छे से हमारे नौहा खान ने उसको
1: बच्चे
2: उस
1: ने पढ़ा
2: अंजुमन
1: था,
2: का भी
1: बच्चे ने
2: शुक्रिया,
1: जी
2: उसमें का बहुत बहुत शुक्रिया उनके साहब अयाज
1: जी।
2: वगैरह जिन्होंने।
1: मैं सिर्फ एक बात अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप सबीले मवद्दत यूट्यूब चैनल को जाएँ देखें, आपको जो नौहा पसंद है आप मजलिसों में वो नौहा पढ़ें, क्योंकि नौहे की मकबूलियत की एक शर्त कही जाती है कि अगर ख्वातीन अपनी मजलिसों में वो नौहा पढ़ने लगें तो वो नौहा मकबूल हो जाता है समाज में। तो आप मदद कर सकती हैं कि वो नौहा जिसमें पैगाम है अहले बैत का पैगाम है, वो नौहे को आप हेल्प कर सकती
0: जी
1: हैं
0: अच्छा,
1: प्रमोट
0: एक
1: करने में।
0: आइडिया है वैसे सबील मवद्दत के लिए, जैसा आपने अभी बोला कि एक लाइन आप उन्होंने थोड़ा सा डिस्कस किया, अगर सबील मवद्दत आके अपने नोहे के नोहों को लिरिक्स के बारे में आके लाइन इन्हें हर अलग से क्लिप में एक लाइन लाके उस लाइन के बारे में डिस्कस करें शॉर्ट क्लिप में, तो आप आवाज़ प्ले कर सकते हैं उसमें, उसका माना के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, शायद और इफेक्टिव रहेगा लोगों के लिए। हाँ यार कितना खूबसूरत वो है अल्फाज यूज़
3: जी,
0: किए हैं।
3: ये भी एक आइडिया है कि बहुत से लोग होते हैं जो खुद से मुतवज्जे नहीं होते, उनको मुतवज्जे कराना पड़ता है, तो ये एक अच्छा आइडिया है, इसको आप ज़रूर
0: तो नेक्स्ट टाइम
3: कंसिडर
0: अपडेट करिएगा आप
2: जी। फिलहाल
0: कि
2: बहुत बहुत सारी बातें हो गई हैं,
0: कितना
2: बहुत सारी बातें हुई, बहुत सी बातें क्लियर हुई हमारे नाज़रीन के लिए, आवाम के लिए, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है,
1: जी
2: तो उससे ज़्यादा जो है वो
3: अब
2: हम
3: गुंजाइश नहीं
2: नहीं
3: है, खाना भी ठंडा हो रहा है, ज़मीर भाई के हम सबका खाना भी है, तो इजाज़त दीजिए कि
1: ख्याली खाना है। वैसे शुक्रिया बहुत बहुत आप लोग हमारे साथ जुड़े लास्ट तक, कमेंट ज़रूर करिएगा, हेल्प अस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी रिक्वेस्ट, आपकी प्रॉब्लम्स को हम समझना चाहते हैं। जितना आप बेहतर हमें अपनी चीज़ों को बताएंगे उतना ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर प्रोग्राम्स बना सकें। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, अगले पॉडकास्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सिर्फ ये लास्ट में बता दूँ कि हम लोग ये बग़ैर लिबास के इसलिए बैठे हैं, बग़ैर लिबास यानी आलिम वाला लिबास, बग़ैर अमामे के इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम चाहते थे थोड़ा कैजुअली आपसे बात करें। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।
3: खुदा हाफिज़।
4: اللهم عجل لوليك الفرج.

very, very negligible when you compare it to the majesty and the might and the ni'mat of Allah Almighty. So, riwayat ke jumle hain, wo apne aap ko bhi dalti hain aur apne bachche ko bhi dal deti hain. Har daur ka apna apna imtihan hai. Yahin se wo nabi ki riwayat aati hai. And that's been quoted in both Shia texts and Sunni texts, right? ثَلَاثَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ يَجِدُوا طَعْمَ الْإِيمَانِ. Three qualities. If there is there within a person, he is the one that has tasted the sweetness of the faith. أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّنْ سَوَاهُمَا. That Allah and His Messenger are more beloved to him than anything else in this world. Second quality, وَأَنْ يُحِبُّ الْمَرْأَى لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِحُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. That he loves somebody, he endears somebody, and he endears somebody only for the sake of love of Allah Almighty. Allah ke liye muhabbat karta hoon, baaki kisi aur cheez ke liye. وَأَنْ يُلْكَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ قَضَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ. And for him, the third thing that is going to give him the sweetness of the iman and the sweetness of the faith and the good taste of the faith is going to be when it's going to be easier for him to be thrown into the fire than him turning his back upon the religion when Allah has protected him from the hellfire. So, dekhe, pehle zamane ke logon ke kya kya imtihanat the. I wanted to elucidate those points a little bit more. But just keeping the brevity of time in our mind too, क्योंकि मंजले मसाइब पे भी आना है. तो कभी आप देखिएगा कि इम्तिहानात किस-किस तरीके से लिए गए. और जब ये अली इब्न अबी तालिब ऐलान करते हुए नजर आते हैं, या अहल अल इराक सयुक्तलु मिनकुम सबअतु नफरिन के اصحاب الاخدود. ओ पीपल ऑफ इराक, from you 7 पीपल आर गोइंग टू बी मार्टेड. 7 लोगों को ऐसे मारा जाएगा जैसा कि اصحاب الاخدود को मारा गया. The way the people of Trench, they burn the people alive, likewise there will be 7 people from you that would have the same fate, that would be martyred in the same way, jaise unhe mara gaya. To riwayat ke jumle hain, jab Hujr bin Adi, have you heard the name Hujr bin Adi, rahmatullahi alayh? When Hujr bin Adi was martyred with 6 of his companions, 7 people. Dekhen Ali ibn Abi Talib ka kamal dekhen, Ali ne yehi kaha kuch mare jayenge, Ali ne number bhi bata diya. Jab aap tareekh mein ja ke padhe to 7 hi logon ko mara gaya. Ek Hujr ko mara gaya aur Hujr ke 6 saathiyon ko mara gaya. Jin 6 saathiyon ko mara gaya unme se ek Hujr ka beta bhi tha. Aap jante hain puri kahani kya hui. Riwayat ke jumle hain, jab Hujr ko maarne ke liye aaye to Hujr ke gale mein, haathon mein hatkadiyan hain, gale mein tauq hai aur zanjeeron mein bande hue hain. To kehne lage, dekho meri zanjeeron ko mat hatana, mere tauq ko mat hatana, qiyamah mein jab main Allah se mulaqat karne jaunga to isi halat mein jaunga. Samajh aa gayi aapko? Riwayat ke jumle hain, kehte mujhe 2 rakat namaz ka waqt do. 2 rakat namaz ka waqt diya. Hujr bin Adi ne wo namaz itni tezi se padhi, jis tarike se main kya kahun, jaise qaza e umriya padh rahe hote hain misal ke taur pe, tezi se namaz ko padha Hujr, itni tezi se namaz. Kehne lage, kahin ye mat samajhne lagna कि अली की मोहब्बत में मुझे परेशानी हो गई है. नमाज भी तेजी से इस वजह से पढ़ रहा हूं क्योंकि अली के लिए जान दे रहा हूं, तो सादत समझ के दे रहा हूं. ठीक है, माय पॉइंट, वन थिंग. एंड सेकंडली, ही लेट हिज सन टू बी मार्टेड फॉर अस. ही लेट हिज सन टू बी मार्टेड फॉर अस एंड देन ही गिव हिज लाइफ. जब वजह पूछी गई तो यही बताया था, मैं नहीं चाहता था कि जब बच्चा मेरा खून देखे तो कहीं ऐसा ना हो कि अली की राह से हट जाए. मैं बच्चे का खून देख सकता हूं, लेकिन अगर बच्चा मेरा खून देखता तो शायद बाबा के खून को देख के परेशान हो जाता. तो पहले जान दी है हुजर ने, तो अपने बेटे की कुर्बानी दी है और बेटे की कुर्बानी के बाद अपने आप की कुर्बानी दी. तो आप जानते हैं परवरदिगार ने हमें कितने अच्छे असलाफ दिए हैं. कभी उन्हें हुजर बिन अदी कहा जाता है, कभी उन्हें कुमैल बिन जियाद कहा जाता है, कभी उन्हें कंबर बिन हमदान कहा जाता है, कभी उन्हें रोशाइद अल हजरी कहा जाता है. मैं कितने आपके सामने मिसालें दे सकता हूँ. कभी उन्हें मीसमु चम्मार कहा जाता है. ये सब वो हैं जिन्होंने अली की मोहब्बत में अपनी जानों को दिया. जब अली की मोहब्बत में जानों को दे रहे हैं तो ना कोई परेशान

नहीं मौजूद है, ना कोई कल्क है, ना कोई और चीज़ जहन में आ रही, क्योंकि जान दे रहे हैं तो मौला की मोहब्बत में जान को दे रहे हैं। दैट वॉज द इम्तिहान, दैट वॉज द टेस्ट, दैट वॉज द ट्रायल, दैट वॉज द डिफिकल्ट मोमेंट्स दैट दे हैड टू गो थ्रू, बट द एंड ऑफ द डे दे वर सुरखरू, दे वर सक्सेसफुल, दे वर वन ऑफ द थ्राइविंग पीपल फॉर वॉट एवर इम्तिहान, फॉर वॉट एवर टेस्ट दैट दे गिव। Same is going to apply to us. We're going to have our imtihan too. Maybe not as severe as people before us have to go through. But those severe examples are given to you that everything we can do qurbani of. But one thing we're never would be abandoning, that is our faith. That is our faith in Allah Almighty. That is our faith in Messenger of Allah Almighty. That is our faith in the wilayah of Ali ibn Abi Talib. That is our faith in the wilayah of the 12 Imams, inshallah. यहीं से बात को अगर लेकर चलते हैं, मैंने आज जलाने वाली मिसाल दी, बड़ी ग्राफिकल मिसाल थी, लेकिन जब आज जलाने वाली मिसाल आपकी खिदमत में दे रहा हूँ तो एक और मिसाल जो हमारे जहन में आती है अज़दारों, वो शामे गरीबा की मिसाल जहन में आती है। शामे गरीबा में देखें कौन सा ऐसा जुर्म था जो नहीं किया गया, कौन सा ऐसा जुर्म था जो नहीं किया गया। या अबा अब्दुल्लाह लकद अज़मत अर्रज़िया व जल्लत अल-मुसीबा बिका अलैना व अला जमीअ अहलिल इस्लाम। जैसी कुर्बानी हुसैन बिन अली की कुर्बानी है, जैसी कुर्बानी आले हुसैन की है, वैसी कुर्बानी किसी और की नहीं। बस अज़ादारों, जब खैमों को जलाया जा रहा था, मैं इस हिस्से का तर्जुमा नहीं करूँगा, लेकिन मलून शिमर और उमर बिन साद जब हमला करते हैं ना, तो एक ऐलान करते हुए हमला करते हैं, इहरकु बियूत अज़्ज़ालिमीन। पहले आले मोहम्मद की गुस्ताखी की गई है और उसके बाद आले मोहम्मद के खैमों को जलाया गया। तो रवायत के जुमले हैं, जब खैमों को जलाया जाता है तो बीबियां कभी एक खैमे से दूसरे खैमे जाती थीं, कभी दूसरे से तीसरे जाती थीं। अदादारों, जब आखिर में सैयद सज्जाद के सामने पहुंचती हैं, कभी उस मंज़र को सोचिएगा कि सैयद सज्जाद ने जब अपनी फुप्पियों को देखा है, सैयद सज्जाद ने जब अपनी बहनों को देखा है, सैयद सज्जाद ने जब अपने घरवालियों को देखा, तो इस हालत में देखा कि उनके सर पर चादरें मौजूद ना थीं। अदादारों, जब इस हालत को देखा तो एक ही सवाल तो किया गया था, ऐ सैयद सज्जाद ज़रा इतना बता दीजिए, क्या जिंदा जल के शहादत को गले लगा लें, या क्या जिंदा जल के शहादत को गले लगाएं, या अपने बचने का कुछ इंतज़ाम किया जाए। अदादारों, सोचिएगा, सईद सज्जाद से पहला मसला पूछा जा रहा है, लेकिन वो मसला भी पूछा जा रहा है तो कितना मुश्किल मसला पूछा जा रहा है। बस अदादारों, जब इस मसले को सईद सज्जाद बताते हैं ना, तो बीबियाँ अपने दिफा के लिए कोशिश करती हैं, लेकिन आप जानते हैं ना कि हमीद बिन मुस्लिम की एक रवायत भी मौजूद है, कहता है कि मैंने क्या देखा, मैंने एक जलता हुआ खैमा देखा, उस जलते हुए खैमे में मैंने देखा, एक बीबी कभी उस जलते हुए खैमे में जाया करती थी, कभी उस जलते हुए खैमे में जाती थी, कभी उस जलते हुए खैमे से बाहर आ जाया करती थी। अब जो मैं करीब जाके देखता हूँ, क्या देखता हूँ, जब भी वो खैमे से बाहर आती थी, कभी आसमानों को देखती थी, कभी दाएं जानिब, कभी बाएं जानिब, कभी अपने हाथों को मचलती थी, कभी वाह हुसैना कहती, कभी वाह अब्बासा कहती थी। मुबादा मैं क्या देखता हूँ, अंदर जाती है, अपने पीठ पे किसी सवार को लाती है, अब जो करीब आके देखा, लाने वाली ज़ैनबुल कुबरा, जिसे लेकर आया जा रहा था सैयद सज्जाद, ऐ ज़ैनब, आज आपने मदद की, यही 11 मुहर्रम को काफिला जा रहा होगा, आप सबको सवार करा देंगी, जब आपको सवार कराने का मरहला होगा, एक बीमार भतीजा। अला लअनतुल्लाहि अला कौमि ज़ालिमीन व सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लीबिन यनक़लिबून। परवरदिगार, हमारी इस कलील को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक, हमारे नासों को रुमाल ज़हरा का हिस्सा बना। परवरदिगार, हमारे मरहूमीन को जवार आल मोहम्मद में, आलियीन में मकाम इनायत फरमा। परवरदिगार, कायम आल मोहम्मद के ज़ुहूर में तअजील फरमा। सलवात अला मोहम्मद व आल मोहम्मद।